एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026 सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

समवेत स्वर में अभी आपने सुना देशगान। पंडित रामानंद शर्मा का लिखा भक्ति गीत अब सुनिए, स्वर शर्मा बंधु का है।

अब सुनिए पंडित नरेंद्र शर्मा की ये भक्ति रचना लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। आस्था के स्वर।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुनिए चिंतन, आलेख और वाचन डॉक्टर शिवनंदन कपूर का।
2: धरती को लोग अपवित्र ही नहीं करते, उसका अंग भंग भी करते हैं, फिर भी वह सब सहती है। इसी कारण उसका नाम क्षमा पड़ा, उसे माँ भी कहा गया। क्षमा का अर्थ दुर्गा भी है, वह स्नेहमयी, सहनशीला तथा उदार है। इसी कारण क्षमा को अनुपम तथा महान गुण माना गया। अपने आप पराए किसी से शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक कष्ट, संताप या हानि मिलने पर भी हम प्रतिक्रिया अथवा रोष न करें, उसे भूल जाएं, यही क्षमा है। कमल की पांखुरी के समान दया, सहिष्णुता, अक्रोध, नम्रता, अहिंसा आदि क्षमा के अंग हैं। जिस मनुष्य में ये गुण होंगे वही क्षमा की क्षमता रख सकता है। यदि क्षमा

0: न होती तो विश्व संघर्ष तथा संहार से दुखमय हो जाता। अपकार एवं प्रतिअपकार से सभी व्यक्ति परस्पर शत्रु हो जाते। क्षमा मैत्री का सूत्र लेकर हृदय से हृदय को गूंथती है। जैसे पानी पत्थर को काट देता है, वैसे ही क्षमा करने से दुष्ट का मन भी बदल जाता है। क्षमा में दुर्जन को सज्जन बनाने का पारस गुण है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुष्ट भी उसका कुछ नहीं कर सकते। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति, अत्रोपतिते वाहनि स्वयमेव प्रणश्यति। आग में तिनका न पड़े तो अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। उसी प्रकार क्षमा करने वाले के समक्ष दुष्ट भी नत हो जाता है। परिवार में मित्र या परिजनों के संग कार्यालय में प्रायः ऐसे सामान्य अवसर आ जाते हैं। साधारण त्रुटियों अथवा बातों पर लोग उग्र हो उठते हैं। भाई भाई पति पत्नी के मध्य संवाद कटुता का रूप ले लेता है। जरा सी बात पर लोग उठ खड़े होते हैं, फिर नज़रें ही नहीं उठती, हाथ उठ जाते हैं। यहाँ तक कि लड़ने वालों के दुनिया से उठ जाने पर भी द्वेष पलता है, संघर्ष चलता है। अतः क्षमा करें, क्रोध नहीं, कारण रिस तन जरे होए बल हानि। क्षमा का कवच हमारे तन मन की रक्षा करता है, आत्मा के चारों ओर अभेद्य प्राचीर उठाता है। सर्वसिद्धि प्रदा क्षमा अलौकिक शक्ति है, वो दुर्बल का बल है, शक्तिशाली की शोभा है। इससे लोग वश में हो सकते हैं। ज्ञानी विचारशील होता है, वो उन्मुक्त हृदय से किसी के अपराध को भुला सकता है। इसीलिए संस्कृत कवि क्षेमेंद्र ने ज्ञान को भूषण रूप में क्षमा कहा था। ज्ञानी भी रोष में आ सकता है, पर उसकी विचारशीलता उसे संभाल लेती है। एक बार संत ज्ञानदेव भी क्रुद्ध हो गए। उनकी बहन मुक्ता ने तत्काल उन्हें सचेत करते कहा, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा, ज्ञानेश्वर मन के द्वार खोल। ज्ञानेश्वर उसी क्षण सचेत हो गए, बोले, विश्व रोषे झाले बहन, संत मुख बहावे पानी। बहन, संसार भी कुपित हो उठे तो भी संत को पानी बन जाना चाहिए। वशिष्ठ से विश्वामित्र द्वेष करते थे। उन्हें अनेक बार हानि पहुंचाने के साथ विश्वामित्र के पुत्र की हत्या भी कर दी, पर वशिष्ठ के मन में कभी बदले का भाव न आया। एक बार रोष से जलते विश्वामित्र रात में वशिष्ठ को मार डालने पहुंचे। वे कुटीर के बाहर ही थे कि उन्होंने सुना, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति पति से कह रही थी, आज की चंद्रिका कितनी आकर्षक है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हाँ, यह विश्वामित्र के तपसी शीतल है। सुनकर संताप से विश्वामित्र का ताप गल गया, वे द्रवित हो उठे। उन्होंने वशिष्ठ को पुकारा और द्वेष भूलकर गले लगा लिया। क्षमा महानता का लक्षण है। क्षमा बड़ेन को चाहिए, पर साइरस ने कहा था, हम दूसरों को क्षमा कर दें, अपने को नहीं। यदि मनुष्य प्रायश्चित न कर स्वयं को क्षमा करेगा तो अपराध दोहराएगा।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और वाचन डॉक्टर शिवनंदन कपूर का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में

उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने

सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह का। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, वाचिका माधुरी सेन।
1: भाई बिन्नोनी राम राम। हमारी आज की कृषि चर्चा को विषय छे प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता। नवाचक स्वर छे माधुरी सेन को। भाई बहनोनी, प्राकृतिक खेती जेख नेचुरल फार्मिंग भी कयो जाय छे, एक असी कृषि प्रणाली छे जी रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक न का उपयोग का बिना करी जाय छे। न ई कृषि पारिस्थितिकी पर आधारित छे, जेमा फसल पेड़ न पशुधन ख एकीकृत कर्यो जाय छे, न स्थानीय रूप सी उपलब्ध संसाधन को उपयोग भी कियो जाय छे। प्राकृतिक खेती में किनी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक या खरपतवार नाशक को उपयोग नहीं कियो जातो है। ई खेती प्रणाली स्थानीय रूप सी उपलब्ध संसाधन जैसा कि गोबर, गोमूत्र न विभिन्न प्रकार की वनस्पति को उपयोग करज। साथ ज प्राकृतिक खेती में विभिन्न प्रकार की फसल न भी उगाई।

0: जाए जेका सी जैव विविधता बनी रहे। प्राकृतिक खेती मिट्टी का स्वास्थ्य का बेहतर बनाना पर ध्यान केंद्रित करज जेका सी फसल की पैदावार बढ़ज न मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। प्राकृतिक खेती पर्यावरण का अनुकूल छे क्योंकि ई रासायनिक प्रदूषण ख कम करज न मिट्टी का स्वास्थ्य ख सुधारज। इन्हीं खेती में किसान न ख रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक पर कम खर्च करनु पड़ज जेका सी उनकी लागत कम हुई जाए। प्राकृतिक खेती किसान न ख अपनी आवश्यकता का लेना स्थानीय संसाधन को उपयोग करना में सक्षम भी बनावज जेका सी वो बाजार पर निर्भरता कम करी सकज। बात करा प्राकृतिक खेती का प्रमुख घटक न की त एमा बीजामृत ई बीज ख उपचारित करना का लेन उपयोग किया जाने वालो एक प्राकृतिक उत्पाद छे। जीवामृत ई एक तरल खाद होएज जी पौधा का लेन पोषक तत्व को काम करज। साथज घन जीवामृत ई एक ठोस खाद छे जी मिट्टी की उर्वरता ख बनावज। आच्छादन ई मिट्टी ख ढकना का लेना फसल अवशेष को उपयोग छे। साथज वाष्पा ई मिट्टी में नमी न हवा की मात्रा ख बनाया रखना की प्रक्रिया छे। फसल विविधीकरण एम विभिन्न प्रकार की फसल उगाणु जी मिट्टी का स्वास्थ्य न पोषक तत्व की उपलब्धता का बेहतर बनाना में मदद करज। प्राकृतिक खेती मिट्टी की भौतिक जैविक न रासायनिक गड़बड़ी ख कम करज। प्राकृतिक खेती करने वाला किसान अपनी भूमि की जुताई कम करी देज या कुछ शर्त का तहत मिट्टी का कटाव की समस्या का रोकने का लेन एक साथ जुताई करनु बंद करी देज जी अंततः मिट्टी का संरक्षण ख बढ़ावो देज। मिट्टी ख वनस्पति या प्राकृतिक सामग्री से ढकी ख रखा न भूमि ख जोतने की बजाय प्राकृतिक कृषि पद्धति में मल्चिंग जल प्रतिधारण खरपतवार दमन न कटाव की रोकथाम का माध्यम सी मिट्टी में सुधार जैसा लाभ प्रदान करना न भूमि का पूरा वर्ष हरा भरा रखना जैसा लाभ प्रदान करना का लेन कवर फसल लगाणु शामिल छे। साथज जितनो संभव हुई सका पशु नख खेती में एकीकृत करा न उपलब्ध पशुधन खाद सहित गाय को गोबर मिट्टी में मूल्यवान पोषक तत्व जोड़ी सकज जेकासी उर्वरक की आवश्यकता कम हुई जाए न स्थायी चरागाह बड़ी मात्रा में कार्बन न पानी ख रोकी सकज जेकासी कृषि उत्सर्जन न प्रदूषित अपवाह में कमी आवज। न आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा वाचिका माधुरी सेन।
2: इछे निमाड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। कार्यक्रम विवरणा।

श्रोताओ, अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7 बजे सुनिएगा वार्ता योग का महत्व और सार्वभौमिकता। वार्ताकार आनंद कुमार जैन। 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: जा

कर 20 मिनट पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। 8:15 पर सुनेगा निमाड़ी लोक संगीत, आपके मीत ये गीत, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, और फिर दिन में 11 बजे से शाम 5:30 तक अनुप्रसारित करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे 10 बजे। 10:05 पर नारी जगत कार्यक्रम में सामुदायिक योग के लाभ विषय पर योग प्रशिक्षक दीपा अनमोले से मोना दफ्तरी की बातचीत प्रसारित की जाएगी। सुगम संगीत सुनिएगा 10:40 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओं, आज संध्या 5:30 पर होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवावाणी कार्यक्रम में संध्या 6:00 आकर्षण होगा क्रम यूथ चॉइस। 6:30 पर आप सुनेंगे ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल, मैच की समाप्ति तक। इस बीच रात्रि 8:00 हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण।

0: आज की ताजा खबर।
1: आज की ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। कल 18 जून को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर दौरे पर रहेंगी। इस दौरान शांति सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन और ड्रोन कैमरा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर्स प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद पंचायत सभा कक्ष खंडवा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। सभी वॉलंटियर्स को मानस पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1933 के संबंध में भी जानकारी दी गई। मार्च 2025 से संपदा 2.0 को प्रभावशील किया गया है, जिस कारण संपदा 1.0 में लंबित दस्तावेजों की कार्रवाई पूर्ण की जानी है। महानिरीक्षक पंजीयन के निर्देशानुसार सभी पक्षकारों को 3 दिवस के भीतर अपने दस्तावेजों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 16 जून को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं कक्षा की द्वितीय परीक्षा 2026 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। mpbse.mponline.gov.in पर

0: परिणाम उपलब्ध है। और अब खबर क्रिकेट की। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत आज शाम भारत और नीदरलैंड के मध्य मैच खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के क्रिकेट प्रेमी श्रोता सुन सकते हैं आज संध्या 6:30 से खेल की समाप्ति तक। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रही 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना चुका है। और अब मौसम का हाल। कल खंडवा जिले में बादल छाए रहे। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। ये थी आज की ताजा खबरें, संकलन अपूर्वा दशोरे का।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है वार्ता योग का महत्व और सार्वभौमिकता, वार्ताकार आनंद कुमार जैन।
3: जीवन में योग का विशेष महत्व है। योग के माध्यम से ही जीवन स्वस्थ और समृद्ध होता है। भारत की इस अनुपम धरोहर को जन जन तक पहुंचाने हेतु भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित हुआ। हम सभी हर्ष उल्लास के साथ विश्व योग दिवस मनाते हैं। गहराई से देखें तो सृष्टि और सृष्टि के जीव योग का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। यही कारण है कुछ आसनों के नाम उनके नाम पर ही हैं। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, दिन और रात होती है। इन सब विशेषताओं को देखते हुए सूर्य नमस्कार नाम दिया गया। इसमें 6-6 आसनों का क्रम चलता है। कछुए की अनेक विशेषताएं हैं जो गुण रूप में अभिव्यक्त की जा सकती हैं। कछुआ दीर्घायु, स्थिरता, जड़ता, आत्मसुरक्षा, अनुकूलनशीलता एवं लचीलेपन का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में कछुए को विशेष स्थान दिया गया है। 22 मई को हम सभी ने विश्व जैव विविधता दिवस मनाया। जैव विविधता को जानने समझने एवं संरक्षण हेतु हम सभी संकल्पित हुए। 23 मई का दिवस संपूर्ण विश्व में कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी ने कछुआ और खरगोश की कहानी बचपन से ही सुनी और समझी है। बड़े होकर हमने इस कहानी में प्रबंधन के सूत्र भी ढूंढे हैं। कछुआ भी जैव विविधता का एक अंग है, इसका संरक्षण आवश्यक है। भारतीय संस्कृति प्राणी मात्र के संरक्षण की है। प्राणी मात्र को उसकी स्थिति के अनुसार जीने का सहज अवसर भारतीय संस्कृति प्रदान करती है। पुराण साहित्य में विष्णु के अवतार कुरुम अवतार की बात कही गई है। समुद्र मंथन के समय सुमेरु पर्वत को विसार कछुआ ने आधार प्रदान किया था। प्रत्येक पशु पक्षी में कोई ना कोई गुण होते हैं जो उसमें प्रमुखता से पाए जाते हैं। यहाँ पर हम कछुए से संबंधित विभिन्न विशेषताओं, गुण और स्थितियों पर चर्चा करेंगे। योग में बताए गए कछुआ आसन एवं अन्य आसनों पर भी चर्चा करेंगे। प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है संपूर्ण स्वस्थ रहते

हुए लंबी उम्र प्राप्त करना। प्राणायाम द्वारा हम श्वास की गति को नियंत्रित कर सुखी, समृद्ध और स्वस्थ हो सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण योग में दिया जाता है। कछुए के बारे में, जो कि 1 मिनट में श्वास प्रश्वास 4 से 5 बार लेता है, उसकी आयु लगभग 200 से 400 वर्ष मानी गई है। ऐसे ही प्रकृति में भी देखते हैं कि जो पशु पक्षी तेज गति से जल्दी जल्दी श्वास प्रश्वास करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्वास की गति को नियंत्रित कर हम अपने बहुमूल्य जीवन को बढ़ा सकते हैं। कछुआ आसन का संस्कृत में नाम कूर्मासन है। यह एक संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द कूर्मा का अर्थ कछुआ है और दूसरा शब्द आसन, जिसका अर्थ मुद्रा या स्थिति है। यह कछुए के समान दिखने वाली स्थिति है, जिस तरह कछुआ किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होने पर अपने खोल या आवरण के अंदर चला जाता है, उसी तरह कूर्मासन करने से आप अंदर की ओर आकर्षित हो जाते हैं और बाहरी दुनिया की अव्यवस्था से बच सकते हैं। इस आसन को अंग्रेजी में टोर्टोइस पोच के नाम से जाना जाता है। यह आसन आपको अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने की एक शानदार भावना देता है। यह मुद्रा आंतरिक जागरूकता और विश्राम के लिए रूपांकित की गई है। इस आसन को करने पर आपके हाथ पैर कछुए के समान बाहर निकले दिखाई देते हैं। कूर्मासन योग आसन को करने से हमारे शरीर का एक अच्छा व्यायाम हो जाता है। शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए कूर्मासन एक अच्छा आसन है। यह मुद्रा हमारे शरीर के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है। यह आसन पीठ और कमर पर अच्छा खिंचाव देता है, साथ ही रीढ़ की हड्डी में भी रक्त संचार को बढ़ाता है। कूर्मासन पेट में बनने वाली गैस और कब्ज से राहत देने में मदद करता है। प्राचीन परिदृश्यों के बीच कछुआ एक प्रतीक है, जो दीर्घायु, सुरक्षा और जमीन से जुड़े रहने के गुणों का प्रतीक है। अपनी धीमी और जानबूझकर कम की गई चाल के साथ कछुआ आध्यात्मिक चिकित्सा का वाहक बन जाता है, जो हमें स्थिरता खोजने, नुकसान से सुरक्षा पाने और अपनी गति से जीवन जीने की कला को अपनाने की परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। कछुए के प्रतीकवाद के मूल में दीर्घायु का सार निहित है। अपने लंबे जीवन काल के साथ कछुआ सहन शक्ति और लचीलेपन का एक कालातीत प्रतीक बन गया है। कछुए की आध्यात्मिक चिकित्सा हमें जीवन के प्रति धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने, समय बीतने का सम्मान करने और अपनी भलाई और जीवन शक्ति का समर्थन करने वाले विकल्प चुनकर दीर्घायु के उपहार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कछुए की दीर्घायु की भावना को मूर्त रूप देकर हम प्रत्येक क्षण के लिए कृतज्ञता की भावना विकसित कर सकते हैं, उम्र के साथ आने वाले ज्ञान को महत्व दे सकते हैं और अनुग्रह और प्रशंसा के साथ जीवन की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। योग आसनों के नाम एक रहस्यमय तार्किक दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के योगासनों का वर्णन आता है। हमारे आचार्य ने विभिन्न प्रकार के आसनों के नाम भिन्न भिन्न प्रकार से रखे हैं। उन्होंने इन्हें बड़े अर्थपूर्ण नाम दिए। कुछ आसनों के नाम पक्षियों से संबंधित हैं, जैसे बकासन, मयूरासन, कुक्कटासन, हंसासन। कुछ के नाम कीड़ों से जोड़े गए हैं, सलभासन, वशिष्कासन। कुछ के नाम जानवरों पर आधारित हैं, श्वानासन, उष्टासन, सिंहासन, गोमुखासन, बातायन आदि। कुछ के नाम पेड़, फूल आदि पर दिए गए हैं, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, पद्मासन आदि। कुछ जलचर और नभसर प्राणियों के नाम पर भी हैं, जैसे मत्स्यासन, कूर्मासन, भेकासन, मकरासन। जमीन में रेंगने वाले प्राणी सर्प को सर्पासन व भुजंगासन नाम दिया है। हनुमानासन, वीरासन, महावीरासन, बुद्धासन जैसे आसनों के नाम भगवान की छवि के लिए और महान ऋषियों जैसे कपिलासन, वशिष्ठासन, विश्वामित्र, भागीरथ आदि नाम उनकी याद के लिए हमारे संस्कार में डाले हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे महाज्ञानी ऋषि मुनियों ने ये नाम उनसे जोड़े? यहाँ यह तर्क बड़े सरल ढंग से किया जा सकता है कि जब हम उस आसन की अंतिम स्थिति में पहुँचते हैं तो वह आसन उसके स्वरूप में वैसा ही दिखता है जैसा आसन का नाम है, जैसे कूर्मासन। जब हम यह आसन लगाते हैं तो यह आसन कछुए के समान ही दिखाई पड़ता है और साधक को उसके प्रति लगाव भी उत्पन्न करता है। इसके पीछे
और भी

0: तर्क दिए जा सकते हैं, जब हम भिन्न भिन्न प्राणियों के समान उनकी आकृति ग्रहण करते हैं तो साधक के मन में उनके प्रति सम्मान व प्रेम उत्पन्न होना चाहिए एवं प्राणियों से घृणा नहीं होनी चाहिए। कारण वह जानता है कि सारी सृष्टि में छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े महात्मा तक सभी विश्वात्मा श्वास लेते हैं, जो असंख्य रूपों को ग्रहण करते हैं, पर निराकार रूप में ही उसका सबसे बड़ा महान रूप है। वैसे यहाँ तर्क यह भी किया जा सकता है कि ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को एक न एक गुण विशेष रूप से प्रदान किया है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे तक में कोई ना कोई विशेष गुण रहता है। चूंकि मनुष्य अपने अंदर अधिक से अधिक गुण समाहित करना चाहता है, अतः उसका उद्देश्य आसन से वह लाभ प्राप्त करना है। उस आसन से जो उसके लाभ हैं वह उसे प्राप्त करना चाहता है। एक कारण और है कि हमें वे आचार्य प्रकृति के निकट लाना चाहते हैं, ताकि प्रकृति के गुणों को भी हम आत्मसात कर सकें, जीवन को समुन्नत बना सकें। भारत देश विश्वगुरु अपनी प्राणी मात्र के प्रति दया दृष्टि कृतज्ञता भाव के कारण सदैव से रहा है। उसमें सृष्टि का सुचारू संचालन की स्थिति के साथ साथ स्वयं का हित भी निहित है। हम सभी प्राणी मात्र की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति संकल्पित हों, जीवन में योग का महत्व समझें, योगासन प्राणायाम व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। हम समझें कि संपूर्ण सृष्टि योगमय है, योग को अपनाने में स्वयं का ही हित निहित है।
1: योग का महत्व और सार्वभौमिकता, ये वार्ता अभी आपने सुनी, वार्ताकार आनंद कुमार जैन। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

जी हमारे इस कार्यक्रम का आप इंतजार कीजिए, बस थोड़ी देर में हम लेकर हाजिर हो रहे हैं एक ही फिल्म से, कार्यक्रम प्रातः 7:20 पर।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 12 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 जून को बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन व आरती में शामिल होंगी। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी

0: सहभागिता करेंगी। वे 20 जून को शाम को करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे दो प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की भी चर्चा की। वहीं फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए परोपकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा।
1: वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में पराली प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
2: सब जानते हैं पराली जलाने के कारण न केवल पर्यावरण बिगड़ता है बल्कि धरती माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मित्र कीट मारे जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति घटती है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से हम भलीभांति वाकिफ हैं। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली ना जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। कई कदम हम उठाने वाले।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 21 जून को होने वाली नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। कल मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से

संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबरों का। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लालेर रेमसियामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हिरामित्सु ए ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें उसका अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा। वहीं T20 महिला विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 34 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, शहडोल जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज शोभायात्रा निकाली जाएगी। आगरमालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ कलेक्टर ने कल राणापुर में जनसुनवाई में 54 आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम में पदस्थ प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च वारंट प्राप्त कर उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 26 जुलाई को 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ होंगी। खंडवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में पॉली हाउस निर्माण एवं गुलाब तथा अन्य फूलों की व्यावसायिक खेती पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट परिसर गुना में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला कल शहीद ज्योति यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। मंडला और डिनोरी में समान नागरिक संहिता की जन परामर्श की बैठक कल आयोजित की गई और शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने कल 41 प्रतिभावान बालिकाओं को 2,05,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक सौ एक दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम खंडवा।
2: प्रस्तुत है एक ही फिल्म से सभी श्रोताओं को रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 1975 में प्रदर्शित एक कामयाब फिल्म।

निर्माता निर्देशक और अभिनेता फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के मुख्य कलाकार हैं। धर्मदास यानी धर्मात्मा की भूमिका में प्रेमनाथ, धर्मात्मा के बेटे रणबीर की भूमिका निभाई है खुद फिरोज खान ने। रेशमा की भूमिका में हेमा मालिनी, अनु के किरदार में हैं रेखा, जंकुरा बने हैं डैनी डेंजोंगपा, मोना फरीदा जलाल, ऋषि रणजीत, नटवर सुधीर, कुंदन इम्तियाज खान, रणबीर के अंकल

0: मदनपुरी अनोखे लाल बने हैं जीवन। अनोखे लाल का भाई सत्येन कप्पू, नर्तकी हेलन, विक्रम सिंह इफ्तिखार, मोना की माँ शांति सुलोचना, पुरुषोत्तम नाना पालसीकर और शक्ति सिंह की भूमिका में हैं दारा सिंह। फिल्म धर्मात्मा के सुपरहिट गीतों की रचना की है गीतकार इंदीवर ने। संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का। अफगानिस्तान में फिल्माई गई पहली बॉलीवुड फिल्म माना जाता है फिल्म धर्मात्मा को। फिल्म की कहानी शुरू होती है, एक इंसान को फांसी की सजा होने वाली है और तभी गवर्नर साहब के पास धर्मदास यानी धर्मात्मा का फोन जाता है।
1: कपूर, एडीसी टू हिज एक्सलेंसी।
2: मिस्टर कपूर, मैं धर्मदास बोल रहा हूँ, मुझे गवर्नर साहब से जरूरी बात करनी है।
1: धर्मदास जी, इस वक्त बात करना मुमकिन नहीं, वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में है।
2: मिस्टर कपूर, एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। गवर्नर साहब के साथ मेरे क्या ताल्लुकात है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि मेरा टेलीफोन है।
3: बोलो धर्मदास, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम चंद मिनट इंतजार नहीं कर सके।
2: जो एक्सेलेंसी, अब से चंद मिनट बाद एक मासूम आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अचानक अभी मेरे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि आदमी बेगुनाह है।
3: ये काम इतना आसान नहीं है धर्मदास, जब तक ये बात साबित न हो जाए कि अपील के वक्त ये सबूत किसी खास वजह से कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके, मैं इस केस में कुछ नहीं करूं।
2: योर एक्सेलेंसी, मैं फांसी की सजा माफ करने के लिए नहीं बल्कि फांसी रुकवाने की विनती कर रहा हूं, जब तक नए सबूतों की रोशनी में इस केस की दोबारा जांच पड़ताल ना हो जाए।
3: धर्मदास, कोर्ट फांसी की सजा केस के हर पहलू को बारीकी से परखने के बाद देती है, जिसमें गलती का इम्कान बहुत कम होता है।
2: लेकिन गवर्नर साहब, इस केस में गलती हो चुकी है।
4: मेरे और आपके एक लंबे अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात रह चुके हैं,
2: लेकिन मैंने कभी अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर इस आदमी को फांसी लग गई तो ये कानून और इंसाफ के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा।
5: May Christ, who chose to die for you, free you from eternal death. May he blot out all your sins and cast your lot among the saints at his right hand. Deliver the soul of thy servant, Lord, from the danger, from the bonds of death.
0: धर्मात्मा अस्पताल में बैठा हुआ है। पुरुषोत्तम को कैंसर है, वो धर्मात्मा से जिंदगी मांगता है, पर धर्मात्मा कहता है कि वो बेबस है और महाकाली से उसकी मौत मांगता है ताकि उसे मुक्ति मिले। दरअसल पुरुषोत्तम धर्मदास का पुराना साथी है। इधर मोना के घर अनु आती है, वो मोना के भाई रणबीर के बारे में पूछती है। पता चलता है कि रणबीर तो अफगानिस्तान में है। धर्मदास सट्टा बाजार कारोबार का बेताज बादशाह है, लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। अनोखे लाल और उसका भाई दोनों उसके खिलाफ चाल चलते हैं। उन दोनों भाई के दो बेटे हैं, दोनों ही नशा करने वाले बहुत ही बिगड़ेल लड़के हैं।
6: बिरादर, बड़े भाई, धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड है ये, फ्रॉड।
7: धर्मात्मा अगर दिन को रात कह दे तो जनता कहेगी रात है, और अगर वो रात को दिन कह दे।
6: गधे के बच्चे।
8: एक गधा दूसरे गधे को कैसे चुप करा सकता है।
6: कम बात, अपने बाप को गाली देता है।
8: बड़े भाई,
6: बिरादर, गांजे की सिगरेटों ने इनका भेजा फिरा दिया है।
8: गांजा नहीं, शिवपुरी खाओ अंकल जी।
6: तू भी बोला कम्बक।
8: चल बे नटवर, इन बुड्ढों में बैठ के कहां अपनी शाम का सत्यानाश कर रहा है, उठ।
6: ना जाने हराम और किस दिन हमारे घर में पैदा हुए थे।
8: बड़े भाई, इन बच्चों की बातों को छोड़ो और इस धर्मात्मा के बारे में सोचो। 20 साल पहले छोटा सा बुकी बन के आया था और आज सारे धंधे में कब्जा करके बैठ गया है।
6: बिरादर, दुश्मन को छोटा समझकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इस धर्मदास को धर्मात्मा बनने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था।
8: बड़े भाई, क्या वो जिंदगी भर हमारी छाती में मुंगलता रहेगा।

0: नहीं बिरादर नहीं, अनोखे लाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैं ऐसा पकवान तैयार कर रहा हूँ कि अगर धर्मात्मा ने उसे जरा भी चख लिया तो बंटा धार हुआ ही समझो।
1: बड़े भाई, मतलब ये कि राम नाम सत्य है?
0: तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
2: रानी के घर के बाहर नटवर यानी अनोखे लाल का भतीजा हॉर्न बजाता है। उसके पिता रानी को रोकते हैं, मगर रानी कहती है कि नटवर एक बहुत ही अच्छे ख्यालात का नेक लड़का है और वो अपना ख्याल रख सकती है। नटवर उसे लेकर दूर समंदर के किनारे चला जाता है। वहां जाकर वो और उसका भाई रानी की इज्जत लूट लेते हैं। रानी के पिता धर्मात्मा यानी धर्मदास के पास जाकर मदद मांगते हैं।
3: मुझे सिवाय इस दरवाजे के और कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता।
4: तेरे दरवाजे पर आने से पहले तुम अपना दरवाजा भूल गए हो। आज से 20 बरस पहले की वो रात याद है तुम्हें, जब मेरी बीवी और बच्चों की जान पर बनाई थी और मैं उन्हें लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आया था और तुमने उन पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए कि तुम अपने आप को एक इज्जतदार शहरी समझते थे और मुझे एक बाजारी गुंडा। उस रात भी वही लोग थे जो मेरी बीवी और बच्चों की जान लेना चाहते थे, और आज भी वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। मैं भी उनसे अकेला ही निपटा था और तुम भी उनसे अकेले ही निपटो।
3: धर्मदास, मुझे उन भेड़ियों के हवाले मत करो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, सिर्फ एक तुम हो जो उनकी कमर तोड़ सकते हो।
4: कल तक धर्मदास तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, और आज जब तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई तो तुम्हें धर्मदास याद आ गया। जिंदगी भर आंखें बंद करके रुपया कमाते रहे तुम, लेकिन कभी एक कैसे दोस्त की दोस्ती कमाने की कोशिश की जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सके?
3: वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी धर्मदास, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं चोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं, अगर मुझे न सही लेकिन रानी को अपनी बेटी समझकर इंसाफ की भीख दे दो धर्मात्मा।
2: धर्मात्मा कहता है कि वो इंसाफ दिलवाएगा। होटल में दोनों बदमाश नशा कर रहे हैं और उनका दिल डांसर पर आ जाता है। डांसर का भी वो रेप करने जाते हैं, पर तभी एक फौलादी किस्म का आदमी जो कि धर्मात्मा का बॉडीगार्ड है वहां आ जाता है। वो उन दोनों को बुरी तरह से मारता है। पुरुषोत्तम मरने वाला है। उसने सारी जिंदगी धर्मात्मा की सेवा की है। मरते वक्त वो अपने बेटे कुंदन की शादी धर्मात्मा की बेटी मोना से करवाना चाहता है। उसका कहना है कि कुंदन मोना से प्यार करता है। धर्मात्मा उसे वचन देता है कि अगर मोना भी कुंदन को पसंद करती है तो ये शादी जरूर होगी। शादी में रणबीर नहीं आएगा तो क्या कहेंगे? जब ये बात धर्मात्मा की पत्नी उनसे पूछती है तो वो नाराज हो जाता है और कहता है कि उसने सब कुछ अपनी मर्जी से छोड़ा है। फ्लैशबैक में ये देखा जाता है कि बाप और बेटे में जबरदस्त कहासुनी होती है।
5: ये गलत है पिताजी, आप देश और कौम से गद्दारी कर रहे हैं। चोरी चाहे एक पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। आप आधे चोर, एक चौथाई चोर, ऐसे चोर नहीं बन सकते। या तो आप चोर हैं या एक शरीफ आदमी।
4: शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, तुमने इनके असली रूप नहीं देखे बेटे। आज से तालीम हासिल करके नए नए आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो।
5: ईमानदारी के नाम पे आप सट्टा चलाते हैं, मटका खोलते हैं। शराफत के नाम पे गलत अकाउंट बनवा के लाखों और करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स खा जाते हैं। देशभक्ति की आड़ में दुनिया भर के जुर्म करवाते हैं। गुंडों, कातिलों, सजायाफ्ता मुजरिमों को बना देते हैं।
4: यह तस्वीर का सिर्फ एक रुख है बच्चे, दूसरी तरफ मेरे चंदे से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धर्मशालाएं और आश्रम चलते हैं, जहां विद्यार्थियों को मुफ्त में तालीम दी जाती है, गरीबों और अपाहिजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है, विधवाओं और अनाथों को शरण मिलती है। मेरा लफ्ज जनता के लिए पत्थर की लकीर है, लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं।
5: आप समझते हैं कि मटके के जरिए हजारों लाखों घर तबाह करके चंद गरीबों के मुंह में रोटी डाल दी तो आप धर्मात्मा बन गए? शहर में 100 खून करवाने के बाद 10 आदमियों के जख्मों पे मरहम रख दिया तो आप धर्मात्मा बन गए? स्मगलिंग के जरिए देश को करोड़ों

0: अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाकर चंद यतीमों के आंसू पोंछ दिए तो आप धर्मात्मा बन गए? नहीं पिताजी नहीं, अगर आपकी नजरों में ये धर्म है तो भगवान जाने देश और धर्म का क्या होगा।
1: तुम बहक रहे रणवीर, शवानी के जोश में आकर ये आदर्शवाद की बातें करना आसान है, लेकिन गरीबी के नर्क से निकलकर मेरी पोजीशन तक पहुंचना नामुमकिन काम है। मैं देश के उन चंद आदमियों में से हूँ जिन्होंने समाज को अपने घुटनों के नीचे दबा कर रखा है।
0: आप यकीनन समाज को अपने घुटने के नीचे दबा सकते हैं पिताजी, लेकिन कानून को नहीं। कोई घुटना इतना मजबूत नहीं होता जो कानून की फौलादी गिरफ्त में ना आ सके। अब भी वक्त है पिताजी, आप ये गलत काम बंद कर दीजिए इससे पहले कि कानून के बेरहम हाथ आपको दबोच लें।
1: कानून कानून कानून कौन से कानून? मैं अपने लिए खुद कानून हूँ, रोज कानून बनाता हूँ, रोज तोड़ता हूँ।
2: बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप पिताजी, ये मत भूलिए जो लोग तलवार के जोर पर जिंदा रहते हैं एक दिन उनकी गर्दन उसी तलवार से कटती है।

रणबीर घोड़े की सवारी कर रहा है, तभी एक खानाबदोश लड़की रेशमा और उसका साथी जंकुरा दिखते हैं। उस तेज तर्रार लड़की को देखकर रणबीर का दिल उस पे आ जाता है, मगर उसका साथी यानी जंकुरा को ये बात अच्छी नहीं लगती। रणबीर घर पहुंचता है तो उसका मालिक, जिन्हें वो बाबूजी कहकर बुलाता है, वो बताते हैं कि वो भारत गए थे और उसे ये खबर देते हैं कि रणबीर की छोटी बहन मोना की शादी होने वाली है। रणबीर बहुत खुश होता है। रणबीर और बाबूजी जब खानाबदोशों की बस्ती पहुंचते हैं तो वहां भेड़ों की लड़ाई होती है। वहां शर्त लगती है जिसमें रणबीर 1000 रुपए हार जाता है और जंकुरा जीत जाता है। शाम को वहां एक गाने पर वही रेशमा नाचती है। जंकुरा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की बार बार रणबीर के करीब जाना चाहती है।

अगले दिन रेशमा जंगल जाती है भेड़ बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ने। वहां जंकुरा आ जाता है और वो कहता है कि उन दोनों के बीच जो भी आएगा वो उसे जान से मार देगा। वहां रणबीर आता है और रेशमा से कहता है कि उसे बहुत पसंद करता है, पर इतने में ही जंकुरा वहां पहुंच जाता है और वो हमला कर देता है। दोनों में जानलेवा लड़ाई होती है, पर खानाबदोशों के सरदार वहां आ जाते हैं। रेशमा रणबीर को बचा लेती है, वो कहती है कि उसका कोई दोष नहीं है। शाम को जंकुरा और रेशमा में फिर एक झड़प हो जाती है। इधर रणबीर अपने घर पहुंचता है और बहन की शादी में शरीक होता है। अनु रणबीर को पाकर बहुत खुश होती है और वो अपने प्यार का इजहार करती है, पर रणबीर को लगता है कि वो एक दोस्त है और दोस्त के नाते ही वो करीब आई है। उसके बाद रणबीर फिर से अफगानिस्तान पहुंच जाता है। रणबीर रेशमा के लिए ये गाना गाता है।

0: भड़काने के बाद रणबीर पूछता है कि वो उससे शादी करेगी। रेशमा मान जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। कबीले में एक सालाना मुकाबला होता है और उस मुकाबले को जो जीतेगा सरदार उसे मुंह मांगा इनाम देगा। जंकुरा जान पर खेलकर वो मुकाबला जीत लेता है और इनाम में वो रेशमा का हाथ मांगता है।
1: सरदार, मुझे रेशमा का हाथ चाहिए। सरदार।
0: तभी वहां रणबीर आके कहता है कि रेशमा पर सिर्फ उसका अधिकार है।
1: सरदार, रेशमा पे हक मेरा है।
2: ये हक तुम्हें किसने दिया?
1: रेशमा ने।
2: रेशमा।
3: हाँ सरदार।
2: अगर इस नौजवान की जिंदगी चाहते हो तो इसे यहाँ से ले जाओ।
4: सरदार, अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आता। आपको मेरी दोस्ती कसम। आप जरा अंदर चलिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
5: लेकिन सरदार, रेशमा रणबीर से प्यार करती है।
6: प्यार एक दिल का जज्बा है जो कल को बदल भी सकता है।
3: सरदार, इस जज्बे को बदलने का हक सिर्फ मेरा है।
2: रेशमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे कबीले में औरतों को मुंह खोलने की इजाजत नहीं है।
3: लेकिन मैं इस कबीले की नहीं हूँ और इस कबीले का कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होता।
6: बेवकूफ लड़की, तुम जबान दराजी करके अपनी मौत को आवाज दे रही हो।
3: आप मुझसे जिंदा रहने का हक नहीं छीन सकते सरदार। मैं एक यतीम लड़की हूँ। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा जरूर किया है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपने मेरी दम तोड़ती हुई माँ से वादा किया था कि आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे।
6: प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इन लोगों का रहन सहन, रस्म रिवाज, कोई चीज हम लोगों से नहीं मिलती। ऐसे माहौल में तुम घुट कर मर जाओगी।
3: और मैं इस माहौल में जीते जी मर जाऊंगी। आज आपकी यतीम बेटी छोली फैलाकर अपने प्यार की भीख मांग रही है। अगर आपने मंजूर नहीं किया तो मैं अपने आप को ढेर
2: दूंगी। से 15 दिन बाद पूर्णमासी की रात को रणवीर और रेशमा की शादी करार पाई है।

0: का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कहता है और वो कहता है कि उसे 50 लाख रुपयों की जरूरत है, जिसके बदले में वो एक साल में 10 करोड़ रुपए कमा के देगा। कुंदन बिल्कुल चौंक जाता है, पर धर्मात्मा को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होती और वो मना कर देता है। उसका कहना है कि ड्रग्स के कारण आने वाली पीढ़ी को वो बर्बाद नहीं कर सकता, मगर कुंदन का व्यवहार धर्मात्मा को अच्छा नहीं लगता। विक्रम धर्मात्मा का खास आदमी है। धर्मात्मा उससे कहता है कि उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी की शादी कुंदन के हाथ में देकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे लगता है कि कुंदन सही आदमी नहीं है। वो विक्रम से कहता है कि रणबीर को वापस बुलाए, उसे कहे कि एक बाप को अपने बेटे की बहुत जरूरत पड़ी है। विक्रम को रास्ते से ही अनोखे लाल और उसके बेटे उठवा लेते हैं। होश में आने पर विक्रम देखता है कि अनोखे लाल के अड्डे पर कुंदन भी वहां मौजूद है।
1: घबराओ नहीं विक्रम, ये सब अपने ही आदमी हैं। ऐसे ही क्या चाहते हो तुम लोग?
2: बिरादर, हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। तुम सिर्फ एक शर्त पर यहाँ से जिंदा जा सकते हो।
1: वो शर्त क्या है?
2: बिरादर, तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो जाओ।
3: धर्मात्मा उम्र के साथ साथ सठिया गया है। हमारी स्कीम में जो बेहतरी कुंदन को नजर आई थी, उस बुढ़े को नजर नहीं आई।
2: जरा सोचो विक्रम, अफीम की तजारत में कितना मुनाफा है। तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के कानूनी दिमाग हो। धर्मात्मा की मौत के बाद तुम कुंदन को हमारे बतलाए हुए रास्ते पर चलाओगे।
1: हाँ, धर्मात्मा की मौत? कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए?
2: बिरादर, पागल हुए बिना कभी इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता?
3: कभी नहीं बड़े भाई।
2: कल धर्मात्मा आखिरी बार मटका खोलेगा और उसके बाद मौत की आंधी उसे कब उठा ले जाएगी उसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा।
1: तुम लोग खुदकुशी कर रहे हो। अगर कुंदन के भरोसे भी ये कदम उठाया है तो बहुत बड़ी नादानी की है।
3: ये नादानी ही तो गुल खिलाएगी विक्रम जी।
1: विक्रम, अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसे निकाल दो। धर्मात्मा की मौत अटल है।
4: कल ठीक 8:30 पर तुम्हारा भगवान इस दुनिया से जा चुका होगा।
1: लेकिन जब तक रणवीर जिंदा है, कुंदन कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता। वो अपने बाप के कातिलों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
2: अगर वो जिंदा रहेगा तब ना बाप के साथ बेटा भी ऊपर जाएगा।
3: समझ गए ना विक्रम जी, राम नाम सत्य है।
2: तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
0: प्लान के मुताबिक धर्मात्मा को गोली मार दी जाती है और बाय चांस कुंदन के कंधे पर भी एक गोली लग जाती है, जिससे कोई उस पर शक भी नहीं करता। इधर इस बात से बेखबर रणबीर और रेशमा मंदिर जाते वक्त रास्ते में ये गाना गाते हैं।

कबीले की एक औरत जो लोगों की तकदीर बताती है, वो बताती है कि अगर रेशमा रणबीर से शादी करती है तो वो रणबीर की मौत का कारण बन जाएगी। रेशमा घबरा जाती है, पर रणबीर कहता है कि वो ये सब फालतू बातें नहीं मानता। धर्मात्मा के घर विक्रम सिंह, जो कि धर्मात्मा का खास आदमी है, उसके जरिए अनोखे लाल खबर भिजवाता है कि वो उससे मिलना चाहता है। मीटिंग फिक्स होती है, जहां कुंदन को भी शामिल होने को कहा जाता है। अनोखे लाल ड्रग्स

0: नटवर और उसका भाई अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों की जीप में बम लगा देते हैं। रणबीर रेशमा से पूछता है कि उसने आज ऊपर वाले से क्या मांगा। रेशमा कहती है कि उसने रणबीर की सलामती मांगी है, रणबीर पे आने वाली सारी मुसीबतें उस पर आ जाएं। और होता भी यही है, बदकिस्मती से रणबीर की जगह रेशमा मारी जाती है। बाबूजी रणबीर को खबर देते हैं कि उसके पिता पर भी हमला हुआ है और वो मौत से लड़ रहे हैं। रणबीर वापस जाने को तैयार नहीं तो बाबूजी कहते हैं कि रेशमा के कातिल को भी वो वहीं पाएगा। रणबीर वापस आ जाता है। यहाँ कुंदन को ये खबर दी जाती है कि पुलिस का सख्त पहरा है और कुंदन उसी अस्पताल में बगल वाले कमरे में है। उसे कहा जाता है कि वो उस कमरे की खिड़की से घुसकर धर्मात्मा का कत्ल कर दे। नर्स अंदर घुसती है और वो खिड़की खोल देती है। कुंदन खिड़की से घुसकर धर्मात्मा का कत्ल कर देता है, पर उसकी अंगूठी धर्मात्मा के हाथ में रह जाती है। इधर रणबीर अपने घर आता है। उसकी माँ कहती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है।
1: माँ, पिछले दो दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो उठो खाना खा लो।
2: किसी चीज को मन ही नहीं करता बेटी, उनके बिना ऐसा लगता है जैसे भरी दुनिया हमें हम अनाथ हो गए।
1: ऐसा ना कहो माँ, जब तक भगवान का हाथ इंसान के सर पे है इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं। और फिर मैं जो तुम्हारे पास आ गया हूँ रहने के लिए।
2: नहीं नहीं बेटी, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी जान खतरे में है, जो लोग तुम्हारे पिताजी की जान ले सकते हैं उनके लिए तुम कुछ भी नहीं हो।
1: माँ, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने पति के कातिलों को माफ कर सकती हो? बोलो माँ, माफ कर सकती हो?
2: नहीं, कभी नहीं।
1: तो फिर मेरा यहाँ रहना तय है।
0: डॉक्टर रणबीर से कहता है कि धर्मात्मा की मौत गला घोटने से हुई है। रणबीर चौंक जाता है। वो उस नर्स के बारे में पता कर लेता है जिसने कुंदन को खबर की थी, मगर उस नर्स तक पहुंचने के पहले नटवर और उसके भाई उसे मार देते हैं। रणबीर उसकी उंगलियों में अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है, पर उसकी उंगलियों में ये अंगूठी नहीं आती। रणबीर बहुत उदास हो जाता है। अनु उसके साथ घूमने जाती है। दोनों ये गाना गाते हैं।

0: गाना खत्म होते ही कुंदन के गुंडे वहां आ जाते हैं और रणबीर को मारने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, पर रणबीर सबको मार देता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। रणबीर को कुंदन बताता है कि विक्रम ने उसके पिता को मारा है और वो अनोखे लाल से मिला हुआ है। रणबीर अनोखे लाल के घर पहुंचता है। दरअसल ये एक स्कीम थी, रणबीर को वहां बुला के मारा जाए। रणबीर का कत्ल तय था, पर रणबीर वहां पहुंचते ही 50 लाख रुपए अनोखे लाल के हाथ में देता है और कहता है कि वो ड्रग डील करने को तैयार है। तो अनोखे लाल पूरी तरह से बदल जाता है और वो उसे जान से नहीं मारता। इस बात से कुंदन बहुत नाराज हो जाता है, कहता है अनोखे लाल ने उसे डबल क्रॉस किया है। कुंदन अपने घर आता है, वो नशे में है और एक खराब चरित्र वाली महिला के साथ है। मोना नाराज हो जाती है, कुंदन उससे भी जबरदस्ती करता है।
1: आपने ये गंदे हाथ दूर रखो मुझसे।
2: कल तक इन्हीं हाथों को चूमा करती थी और आज ये हाथ गंदे हो गए हैं।
1: हाँ, ये हाथ गंदे हो गए हैं इसलिए कि अब ये एक वेश्या और बीवी में तमीज नहीं कर सकते। मुझे नफरत हो गई है तुमसे।
2: मुझे नफरत को प्यार में बदलना आता है।
1: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
2: अरे हाथों ने अच्छे अच्छे जिस्मों को
1: ये काम तो जानवर भी करते हैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अगर भैया को पता चल गया ना।
2: मुझे भाई का डर दिखाती हो?
0: विक्रम को अनोखे लाल और उसके बेटे कहीं ले जाकर कत्ल कर देते हैं और रणबीर को खबर करते हैं। जब रणबीर वहां पहुंचता है और उसके हाथ में वो अंगूठी पहनाता है, वो अंगूठी उसके हाथ में भी नहीं आती। तब अनोखे लाल कहता है कि उसके बाप का कातिल वो नहीं, और ये कहकर रणबीर पर गोली चला देता है। गोली रणबीर के हाथ पर लगती है, तभी पुलिस वहां आ जाती है और मुठभेड़ में अनोखे लाल और उसका भाई दोनों मारे जाते हैं। राखी के दिन मोना वो अंगूठी पहचान लेती है और कहती है ये कुंदन की अंगूठी है। उसे इस बात का पता ही नहीं कि कुंदन ने ही उसके बाप का कत्ल किया था। रणबीर सोचता है कि वो कुंदन को मारे तो कैसे, अगर वो कुंदन को मार देगा तो मोना विधवा हो जाएगी। कुंदन और मोना घर पहुंचते हैं, वहां नटवर और उसका भाई पहले से बैठे हैं। वो कुंदन से कहते हैं कि रणबीर को किसी तरह से रास्ते से हटाना पड़ेगा। मोना सब कुछ जान जाती है, रणबीर को फोन पर वो सब कुछ बताने जाती है, मगर कुंदन आकर उसका गला घोंट देता है। कुंदन वहां से भाग जाता है, हेलीकॉप्टर लेकर नटवर और उसके भाई के पास पहुंचता है। वहां जाकर वो खबर देता है कि रणबीर मारा गया और उन दोनों भाइयों से पूछता है 50 लाख का जो अफीम था वो कहाँ है। अफीम का पता पाते ही कुंदन उन दोनों भाइयों को जान से मार देता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में चढ़ने जाता है, देखता है रणबीर वहां बैठा हुआ है। रणबीर उसे बहुत मारता है और बंदूक के डर से कुंदन खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रणबीर अपनी सारी की सारी दौलत पुलिस के हवाले कर देता है। अनु और रणबीर एक हो जाते हैं। कहानी खत्म हो जाती है। दोनों कहीं से गुजरते हैं, वहीं वो काफिला दिख जाता है और रणबीर को एक बार फिर से रेशमा की

सुपरहिट गीतों के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम में ये थी आज की फिल्म धर्मात्मा की कहानी। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मनीष शर्मा के साथ। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। नमस्कार। खुश हो।

अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइएगा। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, समाचार प्रभात कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने

0: हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग

0: में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की

0: सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मेगाहर्ट्ज पर ये है FM खंडवा। प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत। आज कलाकार हैं कैलाश सिंह और साथी।

0: कैलाश सिंह और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है आपकी मीत ये गीत, बस कुछ ही देर में।
1: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।

आपके मीते गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम का ये पहला गीत है आप सभी के अनुरोध पर ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़, नायमा रंजुबाई धाकड़, युवराज और शिवांगी धाका, बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण तरुण और प्रतीक चौहान, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश और रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, गोगावा से हाजी साक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी और अयूब शेरी, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन, नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा, सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा तबिया, अनस और रेहान, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान और इनके साथी, खंडवा से सुदामा माहेश्वरी, सीता माहेश्वरी, आशीष माहेश्वरी, अमन विजय महाराज कुशवाहा, मानकचंद गुप्ता और अनिल, उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन अमन और दीपांशु खोरवाल, बीड़ से विकास बंसोड़े, रेखा अदिति और वैभव शिंदे, खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता उदय उज्जवल और मितांश कटारे, बड़ा बम चौक खंडवा से संजय मारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी किट्टू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, दत्तरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, बोलसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति और इनके साथ ही, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन बाबू अहद, मिफरा और चाहत, धाड़ी नामदूरा

महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना नाजिया इब्राहिम, कृष्णाबाग दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, मुरली खूबचंद वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हेमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, टोरोवाल नवाशहर से पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी और इनके साथ ही रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी, दिल्ली से बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता और केशु रिधान खुराना, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी से खंडवा से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया, ईशु बाबा, शीतला चौक खंडवा से विशाल सिंह और विवेक सिंह, ग्राम जाखोज से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर, यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मुणत, दुल्हापुर ग्राम से मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजेश, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी और इनके साथ ही गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, राज पैलेस, मऊनाथ, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप सभी ने सुनना चाहा है आशा भोसले और आर डी बर्मन का गाया ये गीत। गुलशन बावरा का लिखा यह गीत है, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म सनम तेरी कसम।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी मीत गीत कार्यक्रम में फरमाइशी फिल्म की। अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम, रुबीना और आरिज और इनके बहुत से साथी, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ, निकहत परवीन, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी, असमानाज और शबनम बानू, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज, गुरैया जालंधर से दीपक और एरावत सोनी, जेल रोड झांसी से आशा जाधव और प्रभा जाधव, डोनी लोहारा बालोद से प्रभा रानी मुखर्जी, मोटका माफी से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और लाला सोनी, पालदाना का इंदौर से हसीना मंसूरी, अमीना मोहम्मद रफी और बबलू मंसूरी, जेलोड दिल्ली से लालबाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती, महादेव पारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े, झुमरी तलैया से डॉक्टर सोनम वली, डॉक्टर तस्नीम कौसर, ज्योति, मीरा, प्रियंका और डॉक्टर सना, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से ईमेल किया है आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी ने, अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीजा, छोटी बलिया कर्जत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, आरजू जोही इकबाल, इमरान अहमद, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, राइन अखलाक अहमद और इनके परिवार के सदस्य, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मरानी और उज्जवल दास मानिकपुरी, गोयल जीन सरावत से मोहम्मद सोफियान, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इसहाक, बब्बू डब्बू, माहिरा, आयशा, कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी, इद्रीश, नूर मीना, इरफान और काशिफ मीना, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव, अनुसुया और पवन राजे जाधव, सनावत जिला खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार भुडाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराले।

वनिता और भामिका गंगराड़े, बाजार फैल शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद जुनेद और रियाज मोहाल, अहमदपुर खेगांव से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और समर फूलमाली, प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले और मंदा खंडाले, ओंकारेश्वर रोड ग्राम थापना से राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति भदौरिया, उदयराज सिंह, अश्विन राज सिंह भदौरिया, धर्मपुरी धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश और साइमा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म घर का ये गीत। शब्द रचना गुलजार की, संगीत एक बार फिर राहुल देवबर्मन का, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का है।

0: सरकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
1: कहिए अपनी बात, सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी गीत। हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रत्येक गुरुवार दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक। टेलीफोन नंबर है 2226063। फोन करें, गीत सुने।
4: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
5: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
6: आइए आकाशवाणी खंडवा से फरमाइशी फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी रखते हैं और शामिल करते हैं कुछ फरमाइशी खत। ग्राम रतनपुर झरन्या से हमें लिखते हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन। भीकन गांव से संतोष सातले, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र, कंचन और चंदन सातले। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। यादव मोहल्ला सनावा से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र मालाकार। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली। ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम्बाई और सूरज कुमार ढाक से। दरियापुर बाभली महाराष्ट्र से गजानन और नवदीप येले। श्री वडनेर अकोला से बलदेव और अरुणा दामोदर। निम्भोरा महाराष्ट्र से भवन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा, अभिजीत, करिश्मा, अशोक देशमुख और आलोक कुलकर्णी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। दुर्गा चौक जूनापानी सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम, हीरालाल बड़ोले, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और चारुवी सावले। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। चर डोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हमें ईमेल किया है दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय शुभम, पवन जरिए, के संजीव डाबेराव। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहावकर, निर्मला और विशाल नोहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मोरहेकर। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। कुम्हार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और इनके साथ ही। चंडीगढ़ सिटी से सतीश और बिमला अनेजा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। चांदूर बिस्वा महाराष्ट्र से रामभाव खड़से, लक्ष्मण, भरत भाऊ, शत्रुघ्न, नारायण भाऊ और उषा खट से रक्षाताई और वंदना मराठा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान छीपा और पूजा परिहार। पदमपुर श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा, रियाज, रिफाकत, रिहान, समरीन और परवीन। सनावद जिला खरगोन से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, के पी सिंह चौहान, दीपक सचिन, कृष्णा विराज, अर्णव काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया। मां नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा, ओम, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, द्वारकीबाई सेन और मनीषा बाई चौधरी। हरियाणा से अंकित कागड़ा, मोनी, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कागड़ा और साहिल कागड़ा। ऊपरकोट मोहल्ला चोकुंठी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नेगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके परिवार के सदस्य। रामगढ़ केंट से महेंद्र मोदी, रोहिदास चौक पंढरपुर से कृष्णा घोड़के, प्रशांत शिंदे, ऋषि यशराज और सुनीता शिंदे। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निबान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा। बुरहानपुर से मोहन मुदलियार, आरुष और आरुषिया। आप सभी की फरमाइश पर यह है आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारलाल ने। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इसे गाया है और फिल्म का नाम है दोस्ताना।

0: आपके मीति गीत कार्यक्रम में ये थे आज के फरमाइशी फिल्मी गीत। अपनी पसंद की फिल्मी गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखिए, ईमेल करते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है आपकी मीति गीत @gmail.com, यानी aapkemeetyegeet@gmail.com। हमें आपके ईमेल्स और पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। और अब अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।

0: ओए होए, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: अभी आप सुन रहे थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहलें यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा लें आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां

0: जब बजाती है ढाई तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
1: और यही कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के

0: बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, रंजीत मूवीटोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रावेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनी हुआ हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है,

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ही इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गानापूसी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। क्या हुआ?
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ, और बड़े अच्छे चित्रकार भी है और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के

0: आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
0: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
0: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
2: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है,
0: जुड़े रहे। एक बेटी की यादों में उसके

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
3: वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्या का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में गर्मी के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बारिश से पहले एहतियात के तौर पर कई आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए हैं ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के केसली से लाडली बहना की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने देवरी क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। डॉ. यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने अपने अंदर गौरवशाली अतीत को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की सहभागिता और नेतृत्व के माध्यम से आज मध्य प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत को विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। वर्ष 2026 को प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचित रकबा पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर करने का है। वहीं दुग्ध उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज जरूरतमंदों को आवास स्वास्थ्य सहित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और दमोह सांसद राहुल सिंह तथा स्थानीय विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कई जन सरोकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें वृक्षारोपण, योग दिवस की तैयारियां और जन कल्याण शिविरों का आयोजन शामिल है। इनमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी हो रही है। सागर जिले में 12 जून से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने सागर संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विभागीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी बैंक के सभागार में बीते दिनों आयोजित की। बैठक में उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में सदस्यता वृद्धि अभियान तथा खरीफ के लिए किसानों को ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा कि किसानों को कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून तक 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 500 रुपये अंश पूंजी तथा 100 रुपये सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जाए जिसे वे 0% ब्याज सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने समिति प्रबंधकों को सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बीते दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेटर मनीष गुप्ता ने बताया कि सागर शहर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें सभी तरह के सुरक्षा इंतजामों और मापदंडों के साथ परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण

कला मकरोनिया सागर में संचालित 15वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में नर्मदापुरम जोन के पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थियों की परेड संपन्न हुई। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी। आलेख था विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के थे। ये
1: जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
3: बजाइयो बजाइयो बजाइयो सना। जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।
1: आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है नारी जगत कार्यक्रम।

कार्यक्रम में सहभागी सभी सखियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। सखियों, आज का नारी जगत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी मोना दफ्तरी। स्वीकार करें हमारा स इसने नमस्कार। सखियों, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आज आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं और स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए, जीवन को जीने के लिए। लेकिन क्या होता, सोचिए अगर हम आज़ाद न होते। सखियों, आप सोचने लगी ना कि आखिर हम ऐसी बातें आपसे क्यों कर रहे हैं। तो सखियों, आज़ादी के भी अलग अलग प्रकार हैं। हम सिर्फ देश की आज़ादी की बात नहीं कर रहे यहाँ, हम उसी में से जो सबसे कठिन विषय की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आज़ाद होते हुए भी गिरफ्त कैद में होना। यानी आप समझ ही गए हैं कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। नशा, नशे की आदत ऐसी कैद है सखियों, जो इंसान को अपनी गिरफ्त में ले ले तो फिर वह स्वयं ही कैदी नहीं हो जाता, वह अपने साथ साथ अपने परिवार को भी उसकी चपेट में ले लेता है। सखियों, हम आपसे बात कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में। सखियों, इतना तो आप सभी समझते ही हैं कि किसी भी अभियान को चलाया तभी जाता है जब समुदाय में वह विषय विकराल रूप ले चुका हो, समाज के लिए देश के लिए हानिकारक हो और शासन के साथ साथ समाज को भी वैकल्पिक रूप से वहां पर जुड़ना आवश्यक हो जाता है। सखियों, नशा केवल एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं करता, पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक चारों ही स्तर पर जीवन स्तर तेजी से खुद की ओर गिराता है और परिवार का भी फिर कैसे हित होगा और फिर कैसे देश हित में वह परिवार व व्यक्ति सहयोग करेगा। जी हाँ सखियों, हर जीवन स्तर कहीं न कहीं देश हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता ही करता है। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आपूर्ति पर अंकुश लगाना, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा जागरूकता और मांग में कमी लाने के सारे सफल प्रयास करना और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नशा करने वालों का उपचार करना शामिल है। जन जन का एक ही नारा, नशा मुक्त हो प्रदेश हमारा, देश हमारा। बहनों, नशा मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों के सेवन के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील माने जाने वाले 277 जिलों में शुरू किया गया था और आज लगभग सभी जगह यह अभियान वृहद स्तर पर चल रहा है। सखियों, नशे की लत का कोई एक कारण नहीं होता, यह तो आप सभी जानती ही हैं। कई बार पारिवारिक माहौल ऐसा होता

है जहां एक पीढ़ी को देखकर दूसरी पीढ़ी नशे को अपना लेती है। अवसाद, उत्तेजक और अफीम युक्त और मति भ्रम करने वाली जो दवाएं हैं, वह सेवन युवा वर्ग को संभालने के लिए आज हमें प्रेरित कर रही है कि हम आगे बढ़ें। यहाँ पर सही समय पर, जी हाँ, यहाँ हम फिर से दोहरा देते हैं कि सही समय पर, उस समय को पहचानना जब युवा या अन्य व्यक्ति नशे की गिरफ्त में हैं, उस समय हमारा परामर्श और मनोवैज्ञानिक रूप से उस व्यक्ति के साथ रहना हमारी, परिवार के सदस्यों की, मित्रों की, गुरुजनों की जिम्मेदारी बनती है। अधिकतर सखियों, उपेक्षा भी कारण बनती है। जहां मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक जरूरतों के साथ व्यक्ति सुकून की तलाश में, कुछ पल की आराम की तलाश में एक बार नशे की लत में लग जाए तो फिर वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शासन द्वारा तो सघन अभियान चला ही जा रहा है जागरूकता के लिए, किंतु हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है सबसे पहले निगरानी, परामर्श, रोकथाम, फिर अगर नशे की गिरफ्त में व्यक्ति आ जाए तो उचित मेडिकल सपोर्ट उपलब्ध कराना या वहां तक पहुंच बनाना। सखियों, बहुत ही संवेदनशील होते हैं वह पल जब कोई युवा या व्यक्ति इन पलों से गुजर रहा होता है। सामाजिक व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चलाई जा सकती है जब हर वर्ग का संतुलन हो। हमें सिर्फ इतना ही करना है सखियों, अपने परिवार, आसपास जरा भी कोई संकेत मिले शीघ्र निर्णय ले, संबंधित व्यक्ति से सम्मानपूर्वक सबसे पहले तो बात करें। जी हाँ, यहाँ हमें व्यक्ति की गरिमा का और उसके सम्मान का ध्यान रखना है, तभी वह आप पर विश्वास करेगा और आपकी बात को सुनेगा। आपकी एक पहल किसी परिवार को सुरक्षित कर सकती है और अगर ज्यादा स्थिति गंभीर हो तो स्वास्थ्य विभाग तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है नैतिकता के आधार पर। स्थानीय स्तर पर आशा कार्यकर्ता, वॉलंटियर हमारे प्राथमिक पहल व्यक्ति हैं जो नशा मुक्ति केंद्र तक सुनिश्चित करते हैं हमारी पहुंच को। एक कदम अपने देश के लिए आगे बढ़ाएं, नशा मुक्त भारत अभियान का सार्थक पहल के साथ हिस्सा बने सकियों, और मन में संतुष्टि के साथ यह भाव लाएं कि हर व्यक्ति हमारी, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। सखियों, नशा मुक्त भारत अभियान पर जो हमारी बातचीत है, अब हम इसे विराम देते हैं और आपके इंतजार को खत्म करते हुए आपके साथ साथ हम भी सुनते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत।

सखियों, ये गीत आपके साथ साथ हमने भी सुना। उम्मीद है कि आपको जरूर ही पसंद आया होगा। और इस गीत के पहले जो हम आपसे बात कर रहे थे ना नशे के ऊपर, तो सखियों यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि नशा हो सफलता का, नशा हो अच्छे कर्मों का, नशा हो अपने परिवार को खुश रखने का, नशा हो अपने देश के हित के लिए कुछ काम करने का, नशा हो खुद को आंतरिक संतुष्टि अच्छे कर्मों से देने का, तभी वह काम आता है और औरों के लिए भी कहीं ना कहीं खुशियों का एहसास दिलाने का माध्यम बनता है। अब सखियों आगे बढ़ते हैं भेंटवार्ता के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय सामुदायिक योग के लाभ। हमारे साथ हैं विस्तार के साथ अपने अनुभव को लिए हुए हमारी सखी योग शिक्षिका दीपा अनमोले जी।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून विश्व स्तर पर हम विश्व योग दिवस के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत होकर योग चेतना, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या फिर सामुदायिक रूप में हो, उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने आज की जो भेंट वार्ता है, इसी तरह की कुछ बातचीत को आपसे साझा करने के लिए आपके बीच में रखी है। हमारे साथ हैं दीपा अनमोले जी। स्वीकार करें दीपा जी हमारा नमस्कार, और हम चाहेंगे नमस्कार के साथ आपका संक्षिप्त रूप से परिचय।
1: जी दीदी, धन्यवाद दीदी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रीमती दीपा अनमोले शासकीय हाई स्कूल दीवाल में पदस्थ हूँ, और साथ ही मैं एक योग शिक्षिका भी हूँ। पिछले 19-20 वर्षों से मैं लगातार योग करती आ रही हूँ, और साथ ही मैंने शासकीय योग प्रशिक्षण भी भोपाल में एक माह का योग प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और खंडवा में भी मैं जिला योग समिति में सम्मिलित हूँ।
0: अब दीपा जी, जैसा कि हम जानते हैं और हमें इस बात का पता है कि आप स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ सामुदायिक स्तर पर भी अन्य लोगों को योग से जोड़ने का एक निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क काम कर रही हैं, तो हम अपनी बात आपके माध्यम से श्रोताओं के बीच में ले जाना चाहेंगे कि आखिर सामुदायिक योग है क्या और इसके लाभ क्या क्या है।
1: अर्थात सबके साथ में योग करना। यदि हम अकेले घर में योग कर रहे हैं तो ना तो हमारी कंसिस्टेंसी बन पाती है, ना तो हमारी रेगुलरिटी बन पाती है। यदि हम सबके साथ समुदाय

0: में मिलजुल कर योग करेंगे तो जो योग करना नहीं भी चाहते हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। और जब हम एक साथ योग करते हैं तो वो जो पॉजिटिविटी होती है, जो सकारात्मकता है, वो हमें प्राप्त होती है। और सब एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे से मोटिवेट होकर योग करते हैं और कराते हैं, और साथ ही योग के प्रति हम जागरूक होते हैं। और जब हम खुले वातावरण में, समुदाय में योग करते हैं तो आसपास के लोग भी देखते हैं और योग के प्रति जागरूक होते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि सबको योग के प्रति जागरूक करना। मैं भी निःशुल्क योग क्लास लेती हूँ रामनगर क्षेत्र में, अभिनंदन सिटी के गार्डन में हमारी निःशुल्क योग कक्षा चलती है। और हमारी योग कक्षा में लगभग 100 से 125 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और प्रतिदिन नियमित रूप से 70 से 80 महिलाएं प्रतिदिन योग क्लास में आती हैं। और जब हम एक साथ समूह में योग करते हैं तो बहुत सारी चीजें, जो घर के हमारे तनाव हैं, चिंताएं हैं, वो सब जब हम एक साथ मिलते हैं और सारे योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम, आसन, हास्यासन आदि, तो जो हमारी घर की चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। और योगाभ्यास से जो लाभ प्राप्त होना है वो तो होते ही हैं, साथ में एक दूसरे की हम समस्याएं भी साझा करते हैं। तो एक साथ जब हम योग करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है।
1: जी दीपा जी, यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ तो योग के माध्यम से, सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से रह सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सामुदायिक योग है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ताकि मन में जो गहरी बातें हैं वो निकल कर आए। और आजकल हम जो डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इस तरह की जो सामान्य सी और बहुत गंभीर बीमारी भी कह सकते हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसका भी निराकरण योगशाला के माध्यम से हो जाता है। जी अब इन ये जो बहनें आपसे जुड़ी हैं, तो इनसे कुछ ऐसा कि इनको स्वास्थ्य लाभ इससे प्राप्त हुआ हो, कुछ ऐसे अनुभव आपके साथ हो?
0: जी दीदी, काफी सारी बहनें अपने अपने अनुभव साझा करती हैं। जैसे किसी बहन को एलर्जी की समस्या थी, उनकी एलर्जी दूर हुई है। कुछ हार्ट पेशेंट बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हार्ट संबंधी समस्याएं थी वो भी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। जो सामान्य बीमारियां रहती है, शुगर, बीपी, थायराइड जैसी समस्याएं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका वाली बहनें भी आती हैं, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बीमारियों, समस्याओं वाली बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सभी को धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स में का समाधान प्राप्त हो रहा है और सभी को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है।
1: जी, यहाँ पर किस उम्र की बहनें आपके साथ योगशाला में सम्मिलित होती हैं?
0: हमारे साथ में दीदी सभी उम्र की महिलाएं हैं, 20-21 वर्ष से लेके हमारे साथ में 70 से 80 वर्ष की उम्र की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, और सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं।
1: जी, अनुभवों के साथ साथ कुछ ऐसे विशेष योग या ऐसे सूक्ष्म व्यायाम जिससे हर व्यक्ति को करना जरूरी है, ताकि वह जीवन में अभी तो बीमार नहीं है लेकिन आगे भी उनकी जो शारीरिक क्षमता जो है और मानसिक क्षमता में उसका विकास हो।
0: जी दीदी, सूक्ष्म व्यायाम की आप बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम करना तो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जो बहनें कठिन आसन नहीं कर पाती हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है या बॉडी में स्टिफनेस बनी हुई रहती है, तो सूक्ष्म व्यायाम बहुत काम के हैं। और उसके साथ साथ में फिर जैसे जैसे उम्र अपनी शारीरिक स्थिति क्षमता के अनुसार, फिर हम विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम करवाते हैं।
1: जी, यहाँ पर महिलाओं से संबंधित दो बातें बहुत ही गहरी हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे। एक तो मानसिक के साथ साथ शारीरिक बदलाव जो होते हैं, जहाँ तक कि आप समझ पा रही हैं कि ये एक तरफ से मासिक धर्म होने की शुरुआत या फिर मोनोपॉज की स्थिति, या ऐसी बात होती है कि जिससे हमारी बहनें किसी से ज्यादा साझा भी नहीं कर पाती, घर की बहनों से ही वह एक दूसरे के अनुभव के साथ अपने आप को समझाती हैं, तो क्या योग यहाँ पर भी कुछ गहरी भूमिका निभाता है?
0: जी दीदी बिल्कुल, योग करने से, प्राणायाम करने से हमारे हार्मोन से संतुलित होते हैं, और पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं और मेनोपॉज के समय जो महिलाओं को समस्याएं होती है, इन सब समस्याओं में भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। बहुत सारे प्राणायाम हैं, आसन हैं, जिनके माध्यम से हम इन सब समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं।
1: अब दीपा जी, चूंकि हम तो प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ में, लेकिन आप अपने व्यवहार और योगशाला के माध्यम से हमारी बहनों और पब्लिक के बीच में हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अपनी सेवाएं दे रही है, तो बच्चों में भी क्या इस तरह की जागरूकता अभी आई है? आपका अनुभव क्या कहता है इस विषय पर?
0: जी दीदी, शिक्षा के साथ साथ योग भी बहुत महत्वपूर्ण है।

0: और अभी तो शासन ने आने वाले सत्र में कंपलसरी कर दिया है कि हर स्कूलों में प्रतिदिन योग की कक्षा लगेगी, क्योंकि जो आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल और जो आजकल का जो वर्तमान में रहन सहन है, तो इसके कारण जो बच्चे हैं उन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्थिति भी सुधरेगी और उन्हें अपने शिक्षा में जो उपयोगी है वो सारी उपयोगी बातें भी उनको प्राप्त होती रहेंगी।
1: जी, हम क्या है, आने वाली पीढ़ी को संभाल ले तो हमारी लगभग हर पीढ़ी संभल जाती है, क्योंकि जब बच्चों को योग करते हुए देखेंगे तो घर की बहनें बुजुर्ग भी इसमें सहर्ष स्वीकार करेंगे। अब अंत में दीपा जी, कुछ ऐसा मैसेज जो हमारे श्रोताओं के बीच में जाना जरूरी है?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, सभी को प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास करना है। हमें स्वयं के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटा तो निकालना ही चाहिए, तो हम हमारे वर्तमान को तो सुधार ही सकते हैं, साथ साथ में भविष्य को भी सुधार सकते हैं। हम ये ना रास्ता देखें कि हम बीमार पड़ेंगे तब हम योगाभ्यास करेंगे, हम स्वस्थ रहते हुए ही योगाभ्यास की आदत अपने जीवन में अपनाएं। तो जब हम समाज में जब साथ में योग करते हैं तो सब अपने अपनी जो समस्याएं हैं वो साझा करते हैं और उनके समस्याओं को जो समाधान हुआ है वो अनुभव साझा करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो दूसरी बहनें सुनती हैं वो भी समझती हैं और अपने साथ साथ दूसरे अपनी कॉलोनी की मोहल्ले की बहनों को भी लाने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन हमारी कक्षा में 2-3 बहनें प्रतिदिन नियमित रूप से जुड़ती चली जा रही हैं, और वो इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि बहनों को लाभ मिल रहा है, उनकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो इस प्रकार से बहनों को अच्छे सकारात्मक एक जो योग है उसमें जोड़ने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है।
1: जी दीपा जी, आपने आपकी योगशाला के साथ अपनी शैक्षणिक व्यवस्थाओं को संभालते हुए आकाशवाणी परिवार के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, अभी हमने सुनी भेंट वार्ता, सामुदायिक योग के लाभ। विस्तृत रूप से हमसे जानकारी साझा की हमारी सखी योग शिक्षिका दीपा अनमोले जी ने। और सखियों, अब सुनते हैं यह संदेश।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

सखियों, अब कुछ बात की जाए अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए। हमारा विषय है आपसे बात करने का, महिलाओं में स्वस्थ वृद्धावस्था एवं योग। इस विषय पर अब हम आपके साथ हैं। सखी, वृद्धावस्था की परिभाषा को हम समझें तो यह दायरा आता है, आमतौर पर अगर हम वैज्ञानिक आधार पर या फिर चिकित्सा के आधार पर देखें तो 60 वर्ष की आयु के बाद का समय, जब हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहे होते हैं, वह हमारी वृद्धावस्था होती है या उसकी शुरुआत होती है। इस अवस्था में शरीर की कार्य प्रणाली धीमी होने लगती है, मांसपेशियों की ताकत में कमी, हड्डियों का कमजोर होना, त्वचा पे झुर्रियां और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पाचन शक्ति के कमजोर होने से। फिर जब बात की जाए महिलाओं की, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था के चलते कम उम्र में ही कहीं यह सारे लक्षण दिखने लगते हैं या फिर हम स्वयं महसूस करने लगते हैं। आप समझ ही गई सखियां, विशेषकर मोनोपॉज के समय शरीर के बदलते व्यवहार, जिसे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लक्षण मानसिक रूप से हम सभी को बेचैनी, कमजोरी और कभी कभी अवसाद की स्थिति में भी ले जाने में सहायक होते हैं। वहां खुद के अंदर हो रहे बदलाव के प्रति हमें सजग रहना बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ वृद्धावस्था की तैयारी हमें खुद ही करनी होगी, कोई और इसे नहीं करवा सकता। अब सखियों, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ताड़ासन के साथ हम सूक्ष्म व्यायाम को अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करें। पैदल चलें और ध्यान रहे सुबह की शुद्ध हवा को जरूर महसूस करें। वृद्धावस्था या बढ़ती उम्र में स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन के लिए

योग निशुल्क सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। यह शारीरिक दर्द, जोड़ों की अकड़न, मानसिक तनाव को कम करके कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करता है। योग करें, निरोग रहें, यूं ही नहीं कहा जाता सखियों। आज के समय में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ को सही रखना हम सबकी खुद के प्रति और परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। सारी बीमारियों की शुरुआत स्ट्रेस से होती है और सखियों इसलिए ध्यान रहे, किसी अनुभवी प्रशिक्षक से ही प्रशिक्षण के पश्चात योग करें, क्योंकि हर बहन की उम्र, क्षमता, शारीरिक लक्षण के साथ साथ चिन्हित बीमारियों के आधार पर ही योग के आयामों से कौन सा योग और सूक्ष्म व्यायाम आपको सही रहेगा यह बतलाया जाता है। खुद को तरोताजा रखना सखियों, योग के माध्यम से हम बखूबी कर सकते हैं, इसलिए सचेत रहें, सतर्क रहें, खुद के प्रति लापरवाह बिल्कुल न बने। योग करें, निरोग रहें। अब सखियों हम जानते हैं कि आपको इंतज़ार है आज की रेसिपी का। आज हम आपके लिए लेके आए आम का पाक। आप सबसे पहले आपको स्वच्छ बेदाग आम आपकी आवश्यकता अनुसार ले लीजिए। सबसे पहले आम को साफ कर ले, बिना पानी डाले मिक्सी में महीन पीस कर स्मूथ प्यूरी यानी पल्प बना ले। भारी तले की कड़ाही में घी गर्म कर पल्प को धीमी आंच में भूने 5 से 7 मिनट। इसमें आवश्यकता अनुसार चीनी डालें, मावा और मिल्क पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक, जब तक कढ़ाई छोड़ने न लगे, पका लें। इसमें अब अंत में इलायची पाउडर में भी डालना है। घी लगी थाली में या ट्रे में समान रूप से फैलाएं, ऊपर से पिस्ता मेवे से सजा दें, हल्का घी लगे हाथों से दबा दें, ठंडी जगह पर रख दें और मनचाहे आकार में काट लें। तैयार है आपका आम पाक। और सखियों अब हम आपके साथ हैं कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे नारी जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश खिदमत है सुगम संगीत। कलाकार हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह।

0: कतील राजस्थानी की रचना अभी आपने सुनी भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के स्वर में। आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप लुत्फ उठा रहे हैं सुगम संगीत का।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
1: कहिए अपनी बात, सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी गीत। हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रत्येक गुरुवार दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक। टेलीफोन नंबर है 2226063। फोन करें, गीत सुने। मुझे कहना

आकाशवाणी खंडवा से सुगम संगीत की अगली पेशकश सईद राही की लिखी यह गजल कलाकार भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

0: हम अपने क्रिकेट प्रेमी श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज संध्या 6:30 से खेल की समाप्ति तक। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: रंग तरंग
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: साधना सरगम और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे ग्रेटेस्ट भजन ग्रेटेस्ट सिंगर्स। इस एल्बम से मीराबाई का लिखा ये भजन, जिसमें संगीत केदार पंडित का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में आप सुन रहे थे गुलदस्ता एल्बम से ये गज़ल, जिसे लिखा अमी खनफी ने और इसे संगीत से सजाया अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे गजल जिसे लिखा कतील शिफाई ने। तलत अजीज के का संगीत गिफ्ट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल इस एल्बम से हमने आपको इसे सुनाया। आपको ये बता दें कि रोजाना शाम 7:45 पर विविध रंगों से सजती है इंद्रधनुष के रंग, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आपको रोजाना सुनाई पड़ते हैं। और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, तो सुनिएगा शाम 7:45 पर। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिसमें कव्वाली गीत गजल और पॉप गीतों की होती है एक साथ बंदिश और आप इन्हें सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: पलाश सेन और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे यूफोरिया एल्बम से ये गीत, और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

बरसात की रात फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, एसटी बतीश, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। माफ़ कीजिएगा, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। इस कव्वाली में साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन

0: मुझे तू भी न जाने,
1: बदन मेरा है कुंदन,
0: मेरा दिल भी है चंदन, मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे धर्मा फिल्म से गीत, वर्मा मलिक का की बोल और सोनी कुमी का संगीत। आपको बता दें कि शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है और विविध भारती पर अगर आप रोजाना रात 10 बजे छाया गीत सुनते ही हैं, लेकिन किसी दिन अगर चूक जाए तो शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं पिछले दिन का छाया गीत जो पुनः प्रसारित होता है। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म से ये सुन रहे थे कलाम आप। निदा फाजलीक ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

उस्ताद सुजात खान की आवाज़ में सुनिए उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है उस कमलेश सोनावाला ने और इसे हमने लिया है हवा के झोंकों में एल्बम से।

उस्ताद सुजात खान की आवाज़ में आप सुन रहे थे उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गज़ल आपने सुनी, कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा और इसे हमने आपको सुनवाया रेड रिबन एल्बम से। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानव को प्राथमिकता दी है जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजावेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल KKailashnathan ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 1:30 से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

राहुल देव बर्मन की तर्ज पर आपने सुना आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज में। सनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की बोल के साथ मशाल फिल्म के इस गीत में हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अनजान के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन की तर्ज के साथ लता मंगेशकर की आवाज जमीन आसमान फिल्म के इस गीत में आपने सुने। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं समय कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: झूठा सच फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और मेन्यू कार्ड, गीतों का मेन्यू कार्ड नहीं बल्कि मेन्यू कार्ड नामक नाटिका आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। मूल कहानी लिखी है ओ हेनरी ने, जिसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है मुरली मनोहर जोशी ने और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। तो आज रात 8 बजे सुनिएगा नाटिका मेन्यू कार्ड हवा महल में। और इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

प्यार झुकता नहीं है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें। माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर की आवाज में ही ये गीत फिलहाल आपने सुना। एसएच बिहारी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेक्स्ट क्या है। तो आज की इबारत है, हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहाँ जरूरी है। अब आप ही सोचिए कब कौन कहाँ किससे क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा, ये कोई जानता है भला? नहीं। यह जानकर भी कुछ सवाल और जवाब अनजान से राहों में भटकते रहते हैं। वैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। तो ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों या कहें कि जब से सुरीला सफर शुरू हुआ है तो हम एक इबारत रोज़ाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफर की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारे साथियों ने आज की इबारत और टेक्स्ट पढ़कर ये अंदाज़ा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली हैं। सुरीला सफ़र में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही हैं, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के प्रकाश। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो ज़रूरी हैं तो गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसे तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी, किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाज़ा तो लगाया है, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, आवाज़ किसकी है ये पहचानिए।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि अनूप कुमार पर फिल्माया गया है ये गीत, तो बिल्कुल सही जवाब। वही हमारी एक साथी कहती है कि इतने सारे सवाल एक साथ धीरे धीरे पूछिए सवाल, तो भाई एक साथ इसलिए हमने सारे सवाल आपसे कह दिए क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जवाब देते रहें और अगर आपको चाहिए तो बीच बीच में तो हम अपना सवाल दोहराते भी रहेंगे। वैसे हमारे एक साथी ने कह दिया है कि उन्हें नापसंद आने वाले सवालों में से पुरुषों के लिए है उनकी आय और महिलाओं के लिए है उनकी आयु, ये सवाल पसंद नहीं आते। वैसे हम कहें कि तो इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, महिलाओं से भी अब उनकी आय ना पूछी जाए और ना ही पुरुषों से पूछी जाए उनकी उम्र, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही हमें छोड़ देने चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सवालों जवाब पर तो कई फिल्मों में गीतकारों ने गीत लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार समय के अनुसार गीत शामिल किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस गीत में पूछा गया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक सवाल था, लेकिन जब कोई हमारे मन के द्वारे या कहें कि घर के द्वारे तक आ ही जाता है तो हम पूछते हैं उससे सबसे पहले एक सवाल, और जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले भी वही सवाल पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, तो अगर आप वो गीत पहचान सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि शायद सभी के लिस्ट में है, और इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको हमें बताना है।

0: शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म में।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला जारी हो चुका है और कई सवाल हमने आपने पूछे, ये कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे नहीं गए, कौन सा सवाल ऐसा है जो कठिन लगता है और कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे नहीं जाने चाहिए। अगर आपको पसंद ना हो तो आप जवाब न देने के क्या क्या तरकीबें लगाते हैं, और जब जवाब देने आपको पसंद नहीं आए तो कैसे जवाब वो थे जो आपको पसंद नहीं आते। वहीं हमने पूछा था कि कौन सी फिल्म है जिसने कई सवाल आपके मन में छोड़ दिए थे, तो इसके बारे में मारिक साथी ने लिखा है कि बागबान फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद कई सारे सवाल मन में चल रहे थे। हमारे साथी लिखती है कि जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है जहाँ हर मोड़ पर एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है, कौन कब और कहाँ हमें मिल जाए ये कोई नहीं जानता, अनजाने रास्ते, अजनबी चेहरे और अचानक होने वाली मुलाकातें ही तो इस सफर को खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं, बस हर पल का खुले दिल से स्वागत करें। और हमारे साथियों ने, हमने तो ये गीत सुनवाया ही, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, इससे थोड़ा ज़्यादा ही संजीदा रूप में ले लिया और उन्होंने भी हमसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आप कहाँ थीं, क्यों नहीं आ रही थीं। इसी तरह से हमारे कई साथियों ने लिखा, एक साथी ने तो लिखा कि अमर अकबर एंथनी में जो माँ होती हैं, छोटा बच्चा तो उनके सामने ही रोता रहता है, तो उसे पहचाना क्यों नहीं उन्होंने, क्योंकि वो उसकी आवाज़ तो सुन पा रही थी। भाई, इन सवालों का जवाब तो हमारे पास

नहीं है फिलहाल, लेकिन हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उनका जवाब जरूर आपके पास है, ये हमें पता है। वैसे एक सवाल मैंने जो पूछा है आपसे उसका भी जवाब आपने हमें दिया नहीं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। अगर आपको और भी ज्यादा हिंट चाहिए, नहीं देखिए जवाब आ गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और ये गीत हम आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाने वाले हैं एक दूसरा गीत जिसमें आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है। और तब तक हम भी देखते हैं कि आपने क्या क्या सवाल हमारे लिए सामने रखे हैं।

जैनिता अख्तर ने लिखा इस गीत को। ब्लैक कैट फिल्म से गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना और एन दत्ता का संगीत था। कार्यक्रम सुरीला सफर चल रहा है इस वक्त विविध भारती पर और आप सवालों जवाबों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, कौन सा सवाल कठिन लगता है या कौन से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, इस पर बहुत से साथियों ने जवाब दिया कि मुझे ये सवाल हमेशा कचोटता रहता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब क्यों है, फिर यकायक गीत मेरे होंठों पर आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उसी तरह से हमारे साथी कह रहे हैं कि सैलरी के बारे में पूछना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आता। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो ना पूछे जाएं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ तो डर के मारे भूल जाते थे। जब फिजिक्स वाले सर सवाल का जवाब पूछते थे तो डर के मारे नहीं बता पाते थे, आते हुए भी पता नहीं क्यों हम उनसे

डरते थे, बाकी सब टीचर से मस्त आराम से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने सवाल क्या पूछा, हम तो समझ नहीं पाए। तो ठीक है, फिर से हम आपको सवाल तो दोहराने वाले ही हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखें, आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे उसे समय स्वयं जवाब देगा। वहीं हमारी एक और साथी ने लिखा कि कभी किसी स्त्री से कोई पुष्टि ही नहीं की जाती कि तुम क्या चाहती हो, मशीन के तरह घर के बाहर के काम करते रहती है परिवार के लिए, अगर आन पड़े तो कमाने भी लग जाती है, लेकिन सभी बातों में एक सवाल अधूरा ही रह जाता है कि तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने लिख भेजा, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता जिसे ज़रूर पूछना चाहिए। वहीं एक और ज़रूरी सवाल है जिससे रोज़ाना हम दो चार होते हैं। हमारे साथी ने लिखा, मुझे रोज़ एक ही सवाल परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और जब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बना लो तो ये कुछ भी क्या होता है। वाकई तो ये कुछ भी क्या होता है, ये सवाल जो है इनके मन में चल रहा है, और खाने में क्या बनेगा ये भी इनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपका मनचाहा गीत हमारे गीत के साथ शायद मैच हो जाए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगले गीत। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

गैम्बलर फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुरीला सफर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें कह रहे हैं और क्या क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए उन पर हमारे साथी कह रहे हैं कि जब किन का जवाब नहीं देते बनता है। इस पर भी हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी पूछे कि क्या बना कैसी लग रही हूँ तो उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। वहीं वो कह रहे हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस प्रश्न का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो कुछ मुश्किल सवाल जवाब के बारे में तो इन्होंने लिखा। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और हरदम पूछा जाता है कि लाडला कौन है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि माँ को अपनी संतान एक समान प्रिय होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब उम्र पूछा जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अपनी उम्र खासतौर से लड़कियों से अगर पूछी जाती है तो ये सवाल सही नहीं लगते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा बच्चा प्यारा है जब पूछा जाए, या किसी ज़्यादा भाई बहन से ज़्यादा आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती है ये पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन से गाने आपको पसंद है लता जी के, रफ़ी जी के, या किसी भी इस तरह से गायकों के नाम लेकर पूछा जाता है, या कौन सा फिल्मी गाना अधिक पसंद है, इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में इस तरह के सवाल जवाब यानी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत होते हैं। दुख सुख के सुर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि वो है जो ये समझ सके कि कुछ चीज़ों को वक्त के भरोसे छोड़ देना और इन सुरीले सफर का मज़ा लेना ही जिंदगी है। ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा का पता है, जिंदगी बस एक सुरीला सफर है और तू ही मेरी रहनुमा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जवाब हमारे साथी लिख भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा जवाब है, किस तरह का जवाब है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। या एक और बात आप बता सकते हैं ये कि अगर खुद से कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि कई बार हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, इस तरह के कई सवाल होते हैं। तो अगर आप खुद से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल क्या होगा? मान लीजिए कि आज ही आपको अगर अपने आप से कोई सवाल पूछना है तो ये बताइए कि वो सवाल क्या होगा। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई हम सभी को मिले हुए, लेकिन हमने तो आपसे आपका हाल ही नहीं पूछा। तो हाल पूछ रहा है ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। और इस फिल्म में नायक नायिका किशोर कुमार और मधुबाला इस गीत में नजर आते हैं और हमारे साथियों ने तो इतनी सारी गाड़ी चला दी है सवालों की, उन्होंने तो हमसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। भाई एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, जो गीत हमने सुनवाया उसका अर्थ ये थोड़ी था कि आप हमसे सवाल करते ही चले जाएं। देखिए आपके पास तो जवाब देने का ऑप्शन उपलब्ध है और आप देते रहते हैं जवाब। हमारे एक साथी ने कहा कि अज्ञात फिल्म ने बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं और सवाल पूछते हैं तो शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज का लहजा और आंखों की चमक मायने रखती है। सवाल चाहे जो भी हो, अगर उसके पीछे सच्ची आत्मीयता है तो सामने वाला अपनी हर फिक्र भूल कर मुस्कुरा देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के दिए सवाल जवाब बहुत कठिन लगते हैं, ना तो सवाल समझ में आते हैं ना जवाब। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके घर में एक छोटी बेबी है, बच्ची है उनकी, और उनकी या उनकी नाती पोती वो हो सकती हैं, और वो जब सवाल पूछती हैं सवाल पर सवाल तो उस नन्ही परी के सवालों के जवाब देते देते थक जाते हैं, लेकिन उसके सवाल बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते। लेकिन इसी तरह से तो वो अपने जान पाएंगी इस दुनिया को और आसपास के लोगों को। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बेसिर पैर बेतुका सवाल पसंद नहीं आते, परिचर्चा के विषय वस्तु से दूर अवांछनीय सवालों से इन्हें चिढ़ है। वहीं हमारे एक साथी तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सवाल जरा छोटा सा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप इबारत तैयार करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोच के आते होंगे, पर प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ अलग हो जाता है संदेशों के साथ, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप सभी का साथ मिलता है तो जो भी हम सोच कर आते हैं उससे ज़्यादा अच्छी हो जाती है सोच, और कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग जब मिलता है तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप सभी के सहयोग से ये सवाल जवाब जो हो रहा है, या कहें कि ये कार्यक्रम जब होता है तो आपका सहयोग भी पूरी तरह से होता है, तो 50-50% पार्टनरशिप पे चल रहे हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और वक्त इतना सटीक हल उसका निकाल कर जवाब देता ही है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाइट में भी आपकी ड्यूटीज होती हैं क्या, जैसे रेलवे में होती हैं? और हमारे एक और साथी पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन तय करता है कि कौन आएगा सुरीला सफर में? तो ये विविध भारती से जुड़े जो भी सवाल आपने पूछे उसका जवाब तो आपको यहीं आकर मिलेगा, तो अगली बार जब आप आए तो यहाँ की सैर पर आइएगा और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफर है तो मृत्यु क्या है? भाई बहुत ही गहन सवाल है ये, और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, बट इस पे तो सोचना बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए जोड़ों के साथ ही अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए।

बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूं, जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने उन्होंने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है, तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी, किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती है, नविवाहिता होती है, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं

या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी किस तरह से बातें नहीं पूछनी चाहिए, कि कभी भी कोई अगर कोई गर्भवती भी है तो उससे भी ये नहीं पूछना चाहिए कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी, जिनकी भी संबंधित होती हैं परेशानी, उन्हें परेशान करती हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं जिसमें शहर और गाँव में बरसते हैं और पूरा गाँव शहर तर बतर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो ज़रूर देना। भाई इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेज कर ही हमारे साथी दे देंगे। तो जिस भी साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूं, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगे। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने आप ये सोचिए कि आप ज़रूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले, और कुछ आराम आपको इस गीत से भी मिल सकता है। तो सुनिए ये गीत और हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और लिखा किसने है।

0: नहीं माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद सांसें गिनती की रह गई और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, 8वीं क्लास में 0 नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती, फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था, लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी। जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से, तो कहाँ जा रहे हो इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी कौर साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगे तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत, और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, फिल्म का नाम भी।

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और अर्चना की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव वर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वहीं मारिक और साथी कहती कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो, मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज की भारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें, घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों, संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं, सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि रोज अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी कौर साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहाँ कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है।

नमस्कार। त्रिवेणी में आज एक नज़र मोबाइल संदेशों पर। संचार व्यवस्था में तकनीक के विकास ने दुनिया को छोटा और जिंदगी को आसान बना दिया है। सूचनाएं देने और अपनों का हालचाल लेने के लिए तमाम उपकरण मौजूद हैं। खासतौर से मोबाइल तो इतना सुविधाजनक है कि जिंदगी बेहद आसान हो गई है। अब तो पहली मुलाकात में ही औपचारिक अभिवादन के बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया बन गया है।

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya dial number?
2: मोबाइल्स का उपयोग फोन करने के अलावा भी होता है। आधुनिकतम तकनीक के मोबाइल्स तो अब उस तिजोरी की तरह हो गए हैं, जिसमें सारे पर्सनल डिटेल्स, रुपए पैसे का हिसाब किताब और तमाम जरूरी जानकारियां सिर्फ एक टच की दूरी पर हैं। ये मोबाइल का एक अच्छा फीचर है, लेकिन जब इसी फोन पर आते हैं ऐसे संदेश जिनमें किसी स्कीम के तहत पैसा डबल करने या आपके पैसे को सही जगह पर लगाने का झांसा दिया जाता है, तो तुरंत उनके बारे में जानकारी शेयर करना मुसीबत बन सकता है।

मोबाइल पर अक्सर ऐसे फोन कॉल्स, एसएमएसेस और सोशल मीडिया संदेश मिलते हैं जो पैसे को बढ़ाने की स्कीमें सुझाते हैं। कुछ संदेशों में तो अपडेट के लिए बैंक डिटेल्स या पॉलिसी नंबर की मांग भी होती है। इस तरह के संदेशों या फोन कॉल्स के निर्देशों या सुझावों पर अमल करना खतरनाक हो सकता है। जब भी ऐसा हो, बिना जांच पड़ताल किए कोई व्यक्तिगत जानकारी ना दें और सावधान रहें उनसे जो मोबाइल के जरिए आप पर नजर रख रहे हैं।

0: जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। माईगांव की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वर्गीय काटजू के परिजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश नाथ काटजू केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित सेनानी थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी काटजू ने विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर यादव ने यहां मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
1: के नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। जहां शहरी क्षेत्र में

0: जानकारी के लिए श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।

0: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का

0: अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, OP नैयर का संगीत।

0: मना है बुरा।
1: गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी, आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार।
1: क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि

0: मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ बहुत गर्मी है,
1: इसीलिए हमने धरती, ऐसा बोला
0: धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है,
1: बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे।
0: मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर हरियाली रोपने के लिए? कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए, जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं,
1: बिल्कुल कर
0: और
1: सकते हैं।
0: घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे, तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है, ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द, तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं।
0: किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर से बच्चों को, बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, ना कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है,
1: उत्साह।
0: तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं,
1: और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती हैं ना,
0: और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कई कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं
1: जी
0: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना।
1: और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए।
0: पूरा मन उड़ेल देते हैं
1: जी,
0: क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है, मन में जो सागर भरा हुआ
1: जी,
0: वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है, और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितनी दोस्ती कराई है ये भी बताएं।
1: उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है।
0: ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते।
1: ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए अगली बात हम करने वाले साड़ियों का संसार में, आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत
0: सुनते हैं, और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का, और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी, तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना

0: पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
1: देखिए उसकी
0: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
1: ममता जी देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहाँ से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग लगा हुआ कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में, तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी औषधियाँ फल फूल सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
0: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी, और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और

0: इनकी घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहाँ पर सूखा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें और साथ में वहाँ पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहाँ पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं।
0: बिल्कुल, किसी और किसी जो में। जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज़्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीज़ों को हमें बनाना चाहिए।
1: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीज़र चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहाँ हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियाँ या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है, जो एकदम जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं है वहाँ तो बिल्कुल नहीं, कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर हैं वहाँ हम कर सकते हैं।
0: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज़ होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी, बाल्टी वगैरह रख दी, वो बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने, इन सब के काम
1: बचपन में तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है। और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया।
0: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे।
1: तो ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है। तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहाँ उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
0: बिल्कुल
1: हरियाली की और पानी की।
0: बिल्कुल, और इन सब चीज़ों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत जिम्मेदार
1: अभी अभी
0: हैं।
1: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना मंजरी जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं और ये गांव में होता है अमूमन, तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं। और ये कॉल एक महिला का था
0: जी।
1: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या करती हैं?
1: मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं, तरह तरह की साड़ियाँ देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मज़ा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियाँ हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना?
0: सही बात है।
1: तो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती हैं, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंग कार जो है बेहद आकर्षक डिज़ाइन तैयार करते हैं। और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिज़ाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब काफ़ी मेहनत लगती है, और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है, और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिज़ाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के, उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा, और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि बड़े चटकलाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियाँ आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक

0: एक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है
1: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है और बिंदियाँ बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्यौहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
0: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
1: बिल्कुल साज श्रृंगार तो बहुत ज़रूरी है
0: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना हरे कांच की चूड़ियाँ, फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
5: बिल्कुल,
0: है ना,
5: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता है।
0: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
5: बिल्कुल,
0: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक

0: श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है। वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन ना से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, और देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखने मैंने 8th क्लास से शुरू किया था। मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है।
0: भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
1: लिखते
0: फिलहाल गाना सुनना चाहिए।

लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि

0: कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई।
1: करना पड़ेगा।
0: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारे मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है, और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है।

0: ये बात को रहने
1: उजागर
0: देते,
1: राज को राज रहने
0: राज
1: दो, बिल्कुल
0: को राज ही रहने देते हैं।
1: तो
0: लेकिन अब वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी, और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
1: वो अभी भी आती है।
0: हाँ,
1: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का, और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
0: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन ज़रूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफ़र के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीज़ें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं।
0: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुज़ुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पर कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज़ को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत ज़रूरी होता है।
1: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें, और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियाँ, वो डायरी में नोट करते थे और उन कार्यों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
0: क्या बहुत अच्छी बात।
1: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
0: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
1: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं, उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी, अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है, जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में ज़िंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
0: प्रोत्साहन, डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन
1: भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका

0: होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं, अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ हर के साथ होती है।
1: प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज़ बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज़ सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है ना, कि
0: बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी, हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पर आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: तो मुझे एक मन्ना

0: मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
0: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुलीवाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
0: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके, तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस सही,
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम, कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस, मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है।
0: जी जी।
1: और छोटा सा बच्चा, नन्ना, वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
0: रास्ते में है अभी तो।
1: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा, मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
0: पढ़ाई मिलती कैसे यार?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
1: हाँ वो है।
0: कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने वाला कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे, हमको, कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके, हाईवे पे कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
1: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की,
0: हाँ,
1: तो एक गाना तो बन गया।
0: कौन सा?
1: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: क्या बात। बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
0: आइए सुनो।

हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविद भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया।

0: लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ है?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूँ, ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूँगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज़्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज़्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज़्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहाँ से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहाँ से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहाँ पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया है यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहाँ यहाँ लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहाँ से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूँ तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊँ, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता है ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार ये अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूँ जगह कि कहाँ मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूँ।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी मुझे, सिर्फ ये था यार मैं क्यों,
0: कहाँ फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी 1 दिन 2 दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूँगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा, और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है तो वहां से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होना, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते हैं ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज़ में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहाँ तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: विजय भाई, अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार, यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे, और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में, और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई, और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे गए, और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
1: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीज़ें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
0: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा। वहाँ कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको, या कहीं से आपको जानकारी मिली?
1: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिव

0: बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ। साक्षी कला मंच एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे तो बस मज़ा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है और हम कौन हैं, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपिट्री चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपिट्री में कि सुनो तुम रेपिट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6×3=18,000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या हाँ मैं करूंगा, ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं कि हाँ अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने यार, पता नहीं कैसे तो पहले वो लोग 1 साल के लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह होगी 4,000, तो 12×48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया, फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया। और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम रेपिट्री ने मुझे दिया और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: M.K. रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, D.R. अंकुर साहब, बजाज साहब, B.M. शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है तो
1: विजय भाई, अभी मौका है और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे जी।
0: अभी किशोर साहब का गाना है शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोर दा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफ़ी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ ज़रूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीज़ें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफ़ी है, तो कई बार देने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज़्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मानसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई, एक प्ले वो देखने आए थे अग्नि और बरखा, एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी,
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई,
0: क्या
1: मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहूँ, जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया मानसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है, इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे ना मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
0: आपसे दूर हूँ,
1: आपसे मिला नहीं, और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहाँ से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
0: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में।
1: बॉम्बे में।
0: अब मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो?
1: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहाँ पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फ़ोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी, तो मैं नीचे बैठा रहा काफ़ी देर तक कि मैं कैसे पूछूँ मतलब किससे यार कि क्या, तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ या, या, या, या तो ऐसे उन्होंने

कहा तो उन्होंने कहा शायद इनको पता होगा मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, तो काफ़ी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फ़ोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं। मैंने कहा

0: कहा तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गया मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, तो काफ़ी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फ़ोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग कि एनी वे, तो थक गई थी काफ़ी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी चाय पियेंगे। मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा वही जो जिस करेक्टर को आप
0: हाँ, वही कर उसी के उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं कि मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कई कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया जितना समय उन्होंने दिया, यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फ़ोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फ़ोन है और ये मीरा जी का फ़ोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फ़ोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फ़ोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब करके, कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको।
0: कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था। उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी।
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: हाँ, ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया, दुबे जी वाला।
0: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी। और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें 2 फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफ़ी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफ़ी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज़ नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफ़ी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते
0: हैं? हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन 2 फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूँ मेरे जैसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।

0: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक,
1: क्या बात
0: कही तो बजाय।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोज़ी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानेंगे कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हट करके बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब

0: नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी, जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहाँ पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है, कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते हैं?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना, कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है, उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप, वो क्या चीज है जो रोकती है?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी, हाँ। शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है, सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बट आप फिल्में उठाएं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है, हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
0: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं, और रिलीज होने वाली 2-3 फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है, फितरत चूंकि मलंग है मेरी इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
0: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूँगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की किताब पर चंद मोती चमकीले हैं तो चंद मोती मटमैले। किताब के कुछ पन्नों पर आंखें ठहर जाती हैं तो कुछ को नजरअंदाज कर पन्ने पलट दिए जाते हैं। बस यही फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी का भी है। कुछ चमकीले लम्हों को हम संजो लेते हैं स्मृतियों की तिजोरी में, कुछ उदास लम्हों को अपनी जिंदगी की किताब से बाहर कर देते हैं। कुछ लम्हों को हम अपनी जिंदगी का आईना बना लेते हैं और देखा किया करते हैं खामोशी से।

दिल का तार चुपके से किसी के तार से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगें, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे। आंखें मिली, दिल मिल गए तो यूं दूर रहकर दिल को तकलीफ देना नाइंसाफी लगने लगी, तो फिर मिलने की दुआएं की जाने लगी।

दिल को समझाया बगैर उनके जीना सीख ले, पर जिद्दी दिल कहां मानने वाला, वो उन्हीं के पहलू में जा बैठा। दिल को क्या खबर थी उनके संग मन्नत का धागा बांधना, मुश्किलों के पुल से गुजरना होगा। मोहब्बत से बावरे हुए मन ने न समझी ये बात और चढ़ता रहा मुश्किलों के पहाड़।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कनें गाएंगी प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसासात उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभाने का।

0: अन्या सिंगरौल जी ने।
1: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म

0: और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी, आजादी, आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी हुँ? लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या

0: तोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
1: बड़े बहादुर थे ये।
0: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
2: दादी दादी हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
1: वो कहाँ के रहने वाले थे?
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
1: अच्छा।
0: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
2: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
1: दादी उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
1: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
1: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
2: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं
1: पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
5: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों

0: उसकी तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
1: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
2: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: मंगल पांडे
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
3: इंकलाब
4: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
5: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
6: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: अरेस्ट करो!
5: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
6: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: हम पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी।

0: नहीं थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
1: ओ, इसके बाद क्या हुआ दादी?
0: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
1: ओ।
2: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैल बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई मंगल मस्ती में चूर चलल पहला बागी मशहूर चलल गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल गोली के तुरंत निशान भईल जननी के भेंट परान भईल आजादी का बलबेदी पा मंगल पांडे बलिदान भईल जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ,
6: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की,

0: ये चाकू देख रही है ना?
1: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
2: अरे
1: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
2: हट
1: रास्ता से।
3: क्या हुआ? देखो जल्दी ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
0: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
2: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
0: ये चाकू देख रही है ना?
3: छोड़ दो,
2: मुझे मत मारो। कुछ मत करो।
3: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
0: जल्दी
3: याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो,
1: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
3: अरे मेरे बात को छोड़ो,
2: मेरी माँ को छोड़ो।
0: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज
3: नहीं।
1: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
3: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
2: देवेंद्र।
4: हाँ दीदी।
2: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
4: अच्छा,
2: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
4: अच्छा।
2: हेलो।
5: हाँ बेटा बोलो।
2: पापा।
5: हाँ
2: पापा।
5: हाँ बोलो।
2: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
5: कौन घुसा है?
2: माँ को बहुत मार रहे हैं।
5: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
2: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
4: अच्छा।
2: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसा है, बचाओ
6: बचाओ। और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
7: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
8: वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
9: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
8: देखो ना, सबकी जान बहादुर
9: है मेरी बच्ची।
6: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
11: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार।
12: उमंग उमंग उमंग उमंग।
13: जी हां श्रोताओ, आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से, और अब आपको सुनवाएंगे युववाणी कार्यक्रम।

0: के दो प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का 100वां रामसर स्थल किस अभयारण्य को घोषित किया गया है। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आप खोजिए इन प्रश्नों के उत्तर, और आपके उत्तर सही है या नहीं ये पता चलेगा आपको कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, इन दिनों हम सभी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि हमें इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिल सके। खैर, कुछ दिनों बाद मानसून तो आएगा ही और हमें राहत भी मिलेगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे क्षेत्र जो सूखे से ग्रस्त रहते हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वर्ष भर तापमान अधिक ही रहता है, उनके लिए ये समस्या कितनी चिंताजनक होगी। आज बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से मरुस्थलीकरण और सूखा सबसे जटिल पर्यावरणीय समस्या बनता जा रहा है। इसी समस्या के निपटान के लिए प्रतिवर्ष 17 जून यानी आज ही के दिन विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भूमि को बचाना और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, ये दिवस हमें याद दिलाता है कि इस समस्या के निपटान के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है, जिनमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण की तकनीकें शामिल हैं। हम वृक्षारोपण के माध्यम से मिट्टी की कटाई को रोककर अपना योगदान दे सकते हैं। वर्षा जल संचयन के द्वारा भी हम भूजल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वर्षा जल संचयन के लिए अपने प्रयास के कारण हमारा खंडवा जिला राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी हो चुका है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन और जैविक खेती को अपनाकर भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और स्वस्थ भूमि समृद्ध अर्थव्यवस्था का आधार है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए हम सभी को साथ मिलकर भूक्षरण और सूखे से निपटने के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि समृद्ध भूमि से हमारा जीवन भी समृद्ध हो। एक अच्छे जीवन के लिए पर्यावरण तो अच्छा होना ही चाहिए, इसके साथ ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन होना भी बहुत जरूरी है, और शरीर और मन को स्वस्थ रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 12वां संस्करण है, जिसकी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। दोस्तों, योग के लाभ तो हम सभी जानते हैं, आइए इसी क्रम में सुनते हैं योग इंस्ट्रक्टर करिश्मा मिश्रा के विचार।
4: नमस्कार, मैं करिश्मा मिश्रा खंडवा की निवासी हूँ। शिक्षा, समाज और स्वास्थ्य से जुड़े विषय हमेशा से मेरी रुचि का केंद्र रहे हैं। इसके साथ ही मुझे योग के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर भी मिला है, और मैं योग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य कर चुकी हूँ। इसलिए योग के महत्व और उसके लाभों को मैंने केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव भी किया है। इसी अनुभव के आधार पर आज मैं आपसे योग और ध्यान के बारे में अपने विचार साझा करना चाहूँगी। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, यानी शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ जोड़कर संतुलन बनाना ही योग है। भारत को योग की जन्मभूमि माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले योग की परंपरा शुरू की और इसे मानव कल्याण का माध्यम बनाया। आज दुनिया के अनेक देशों में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने पूरे विश्व को योग जैसी अनमोल देन दी है। योग का इतिहास बहुत पुराना है। इसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया, इसलिए उन्हें योग का जनक कहा जाता है। पहले के समय में योग लोगों की जीवन शैली का

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका वाणे। दोस्तों आज है बुधवार और आज का क्रम है यूथ चॉइस। तो हम बढ़े अपने क्रम पर, उससे पहले आइए जानते हैं हमारे आज के सामान्य

0: हिस्सा हुआ करता था। लोग इसे अलग से व्यायाम नहीं मानते थे। उनके खान पान, दिनचर्या और जीवन जीने के तरीके में ही योग शामिल था। शायद यही कारण था कि लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अधिक स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज की जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है। बढ़ता तनाव, देर रात तक जागना, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग और अनियमित खान पान हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में योग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस होती है। योग करने से शरीर मजबूत होता है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। योग पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, रक्त संचार को सुधारने और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। आज तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। ऐसे में योग और प्राणायाम मन को शांत रखने में मदद करते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति, ये सभी प्राणायाम तनाव को कम करने और मन को स्थिर रखने में सहायक होते हैं। आजकल हमारी खान पान की आदतें भी बदल गई हैं। जंक फूड, अनियमित भोजन और पर्याप्त नींद की कमी कई समस्याओं का कारण बन रही है। योग हमें केवल स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि एक बेहतर और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी देता है। विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी योग बहुत लाभदायक है। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस, तनाव, थकान और अनियमित मासिक धर्म जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। नियमित योग और प्राणायाम इन समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। भुजंगासन, बालासन और अनुलोम विलोम जैसे अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक माने जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं उनके पास योग करने का समय नहीं है, लेकिन योग के लिए घंटों का समय निकालना ज़रूरी भी नहीं है। यदि हम प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट भी निकाल लें तो कुछ सरल आसन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। योग के साथ साथ ध्यान यानी मेडिटेशन का भी बहुत महत्व है। ध्यान मन को शांत और एकाग्र बनाता है, इससे तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और मन में सकारात्मकता आती है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और बुजुर्गों सभी के लिए ध्यान लाभदायक है। प्रतिदिन कुछ मिनट का ध्यान भी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। आज योग केवल स्वास्थ्य का साधन ही नहीं बल्कि एक अच्छा करियर विकल्प भी बन चुका है। मैं स्वयं योग के क्षेत्र से जुड़ी रही हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि योग प्रशिक्षक का काम केवल आसन सिखाना नहीं बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना भी है। जो लोग योग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं वे योग से जुड़े सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। कई संस्थान योग प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि योग और ध्यान केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का एक सरल मार्ग है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान को दें तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना योग और ध्यान का महत्व। विचार साझा कर रही थी योग प्रशिक्षक करिश्मा मिश्रा। आइए दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम। हमारे आज के पहले गीत के लिए हमें ईमेल प्राप्त हुआ है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गीत के लिए हमें अगला ईमेल मिला है अररिया बिहार से फैजल इमाम मोहम्मद, अफजल मोहम्मद, अकमल, नफीजा और प्रवीण। ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ईमेल प्राप्त हुआ है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। नर्मदा नगर से ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता है सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।

ग्राम खेगाव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा का ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार के, इसे संगीत बद्ध किया है SD बर्मन ने।

0: अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम जसवाड़ी से। भेजने वाले हमारे श्रोता है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। कवर कॉलोनी बड़वा से ईमेल प्राप्त हुआ है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। सनावत से ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता है शेख मूसा मोहसिन। दंतरेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। ग्राम पंचायत बढ़ेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, राजीव वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा। बड़ाबम चौक खंडवा से ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता है ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू। नगरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं के पसंद पर फिल्म विवाह का गीत। स्वर है उदित नारायण और श्रेया घोषाल।
1: मुझे

अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, बेबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ, जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाक से साक्षी, ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड सनावत से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। इसी गीत के लिए हमें पत्र प्राप्त हुआ है छत्रपति संभाजी नगर से। भेजने वाले हमारे श्रोता है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा और रेखा देवी शॉ। 1920 ईवल रिटर्न्स, इस फिल्म का ये गीत सुनिए, स्वर है महालक्ष्मी अय्यर का।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, गौरी, ओम कुमार सुरलकर, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, राकेश, पप्पू, निशा, सपना, ओम, द्वारका बाई सेन, इंदौर लिंबोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी। लीजिए सुनिए इनकी पसंद पर ये गीत। फिल्म है राजनीति, स्वर है आदेश श्रीवास्तव का।

इसी गीत के साथ हमारा आज का क्रम यही संपन्न होता है। आइए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत का 100वां रामसर स्थल किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहाताल भी कहते हैं, जो यूपी में स्थित है। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर है लद्दाख। दोस्तों, ये तो हुए आज के प्रश्नों के उत्तर। अब कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रियंका वाणी को। नमस्कार।

0: मोहल्ले, रिश्तेदारों।
1: आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी खंडवा है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत आज भारत और नीदरलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच

0: की टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लॉर्ड्स में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
0: आकाशवाणी We now bring you the ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Netherlands. Of the

0: 20 cricket match to be played between India and Netherlands. Of the
1: रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका मेन्यू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट्य रूपांतर मुरली मनोहर जोशी, निर्देशन मुख्तार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता मोतीलाल पर। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। ढलती जाए रात, रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम, अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में, समय होता है 7:00। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:30 पर। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम सुनेगा 8:15 पर। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण सुनेगा 2:00। नए फिल्मी गाने हम रोज लेकर आते हैं 8:30 पर और रात 8:15 पर। कार्यक्रम होता है चित्रलोक।

आज के फनकार। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन पर। इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। 11 लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। 1 आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर। दोपहर 3 बजे बहने सुनेंगी सखी सहेली कार्यक्रम। शाम 4 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में नाजनीन की लिखी झलकी सुनेगा पुरातत्व के तत्व। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगे राजल अशोक। ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन वंदना खांडेकर के स्वर में। वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत बर्मन ने।

0: सतत वाद्य। प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य 3 आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दान का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दान के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दान के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

0: अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे।
1: गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
6: आप बल्लेबाजी कीजिए, हम आप।
7: मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन

0: अमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, ये है आकाशवाणी खंडवा।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
4: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।

0: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम ही हो।
2: एफएमएंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
3: तुम आए तो आया मुझे गली में
2: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
5: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
4: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
5: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
6: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और आकाशवाणी खंडवा। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर
1: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं, आइए भोपाल केंद्र से आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: TLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा कल से होगा शुरू। इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत के आधार स्तंभ बताया। और मानसून की रफ्तार थमी, प्रदेश में अगले सप्ताह दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल इंदौर पहुंचेंगी, इसके बाद वह बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। शनिवार 20 जून को श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। सोमवार 22 जून को श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। डॉक्टर यादव ने आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे, इसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से कुल 207 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें करीब 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के सामाकोटा बैराज के लोकार्पण सहित क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तथा नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सामाकोटा बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही बैठक रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके राजनयिक संपर्क तथा प्रमुख मंचों पर वैश्विक नेताओं के साथ उसकी सक्रिय बातचीत

0: को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा पटना में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है।
2: 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, तो नंबर एक, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स, लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है।
0: उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज को कुछ उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक पौधा अपने बुजुर्गों के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून को भंवरताल गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: Dutch team has been quite amazing and interesting because they came the hard way, changing.
1: और झुंड वहां पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की, बोल सुरेंद्र साथी के।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर ख़त्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
2: तो क्या सभी मेज़ के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
3: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
2: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
3: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
2: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
3: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
2: बाय बाय बैरा।
4: यस मैडम, कमिंग।
5: क्या खाइएगा?
2: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
5: ओके मैडम।
2: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
6: हेलो सर।
7: एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज टू रिमेन इन द स्टेट डोमेन ऑफ द स्टेट, बट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन वर आइडेंटिकली वर्डेड, बट पीपल थॉट दैट नो दिस इज अ यूनिक केस ऑफ
8: राइट,
7: दैट वाज नॉट द केस। एंड आर्टिकल 370 यू नो वाज इन द पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
8: करेक्ट।
7: And part 21 is titled Temporary and Transitional Provisions. By definition, it was not supposed to remain permanent.
8: That's right.
7: Article 370 should have gone much earlier.
8: Yeah.
7: But somehow it got embedded in the national psyche or mindset that no, it is permanent.
8: Mm.
7: So by definition, it was temporary.
8: Right.
7: It had to go. And you know what happened was that when the Constituent Assembly for Jammu and Kashmir drafted and approved the constitution, separate constitution of,
8: yes,
7: for J&K, and then decided to dissolve itself.
8: Right.
7: They should have at that time recommended abrogation
8: of that article
7: because it was supposed to
8: be transient.
7: Only for
8: transient.
7: That period.
8: Yeah, transient.
7: And again, this separate constitution was not something peculiar or unique to Kashmir. Not many people know that many princely states which signed the instruments of accession, they prepared their own constitutions through different processes.
8: Right.
7: As many as 62.
8: Really?
7: Yeah.
8: Okay.
7: Yeah.
8: Ah. So it's not known.
7: It's not known.
8: Yeah.
7: That is the, you know, narrative that was built, created, fostered.
8: Yeah. Okay.
7: So similarly, this was a temporary provision. It should have ended then. So they did not do so. Whether by accident or design, I do not know. But then in doing so, they couldn't have rendered the Indian Parliament

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत

0: देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
3: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: road. She was very expensive in the first over. Four of us, 1 for 37. Good comeback after a flurry of white. 6-1.
1: सबसे पहले सुनिए येसुदास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने सुनैना फिल्म में यशुदास को सुना। अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है संतोष आनंद ने।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगली पेशकश अनुरोध फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश गुलजार के लिखे गीत से, संगीत तैयार किया है राहुल देव वर्मन ने, आवाज किशोर कुमार की फिल्म का नाम देवता।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है?
4: बैठो बैठो बैठो।
3: हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमा भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहाँ चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दी।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं 3rd क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो 1st क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3rd क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?

0: कोर्स ऑफ कोर्स।
1: मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई वो तुम्हारे डीटीएस।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: सन 1954 में एचएस रावेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनी बाबू तुम
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है,

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना खुशी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा?
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में

सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाती।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमिया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी।

0: अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Kiran Jha. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump in Avignon, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi condemned President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and the safety is of utmost importance to India. Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. On the margins of the G7 summit in Avignon, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. Prime Minister Modi also held a meeting with President of European Commission Ursula von der Leyen and President of the European Council Antonio Costa on the sidelines of the summit. The G7 leaders adopted 3 key declarations amid at promoting balanced, durable and resilient growth, securing critical mineral supply chains and creating a safer digital space for miners, with several partners countries extending support to the initiatives. During the G7 summit in Avignon, France, the leaders issued a statement on balanced and resilient growth, stressing the need for stable energy markets, secure supply chains and reforms in global economic institutions. They emphasized the importance of restoring safe navigation through the Strait of Hormuz, avoiding arbitrary export restrictions and addressing widening global economic imbalances. The leaders also called for greater preparedness to tackle the emerging risk and opportunities arising from artificial intelligence and quantum technologies. The leaders also adopted a declaration focused on creating a safer digital space for miners. India joined Brazil, Egypt, Kenya and South Korea in backing the call. India and United Kingdom today announced that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will enter into force on 15th of July this year.